दुबली हो के हड्डी पतली तक नजर आए, न दुबली हो न दुबली हो। वो कई खूबियों वाली तिरछी तिरछी तिरछी तिरछी नजरों वाली, ओ गोरी गोरी गोरी ओ गोरी हो के काली, जो जहां के वाली मिल जाए तो फिर बस मिल जाए तो फिर। एक एक एक एक चाय की प्याली, एक एक एक एक चाय।

नाजासी बपाली तिरछी तिरछी तिरछी तिरछी नजर वाली ओ गोरी गोरी गोरी ओ गोरी हाथ काली जो जहाँ से वाली मिल जाए तो फिर बस मिल जाए तो फिर एक चाची चाली।

0: किया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया चोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
1: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
0: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
1: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasun.
0: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Emprio Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: है लाइका गोल्ड। सी टीवी एंड सी फाइव प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम, प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर। इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9-12 जुलाई, इवेंटिम अपोलो, हैमरस्मिथ। हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ, विजिट www.eventimapolo.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर Radio.
1: Are we there yet?
2: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
1: Relax, I've booked the Uber already.
2: How? My roaming isn't even working yet.
1: I switched to Simzy before we left London.
2: Simzy? Since when are you the tech expert?
1: Since I decided I want a stress-free holiday.
3: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
4: T's and C's apply.
5: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
6: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।

0: प्यार।
1: ये है लाइका गोल्ड। आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
2: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: Breakfast with Deep Raja. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK brand.
1: Come on, if those two Ghanas didn't wake you up, then I don't know what will. Well, maybe my voice. Good morning, a pound in your pocket here can get you 128.40 Indian rupees. But don't forget, when it comes to SBI, there's a lot you can do with it. For example, you can make you can send your money directly through the internet, through the bank, at the bank, or even using the Yono SBI UK mobile app. So don't delay. Make those transfers today.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Deep Raja, waking you up every weekend. Laika. This is Laika.
1: And a very, very good morning to you. It's time for the first brain teaser this morning. Utortoji, I need your help. Now, this is what it is. Very quickly, I'll come to the point. You know, I saw something the other day that made me think. I mean, a lot of families eating together, and there was a family eating, and they were, you know, having their evening meal and talking and discussing things and getting things right. So I want to ask you, because I don't think that's really real anymore, is it? Does eating together as a family daily make you closer, or put fear in you? Because you may be asked about things you don't want your family to know about. Hey, what do you think? Does eating together more often as a family make you closer? Or do you feel that's not really what you want? Because if you do that, then all of a sudden, things you don't want people to know about suddenly become up to light. What do you think? You know the numbers, and I ask because everybody goes on about eating together, but then sometimes with shift work and stuff, is it real? You tell me. You know what the numbers are. Let me know.
0: WhatsApp message Laika Gold now on 0744 23 23 23. Breakfast with Deep Raja.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 02085748410
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02089223444 Our line.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
6: इस साल महाराष्ट्र दिवस 2026 सेलिब्रेट कीजिए एक खास अंदाज में। सैटरडे 2 मई आइए लैंगली कॉलेज स्लाऊ। एंजॉय कीजिए मराठी लोक कला, ट्रेडिशनल स्टॉल्स, डिलीशियस महाराष्ट्रियन फूड और फैमिली एंटरटेनमेंट का फुल सेलिब्रेशन विद सिंगर्स फ्रॉम महाराष्ट्र। एंट्री सिर्फ 5 pounds। फैमिली ऑफर्स भी अवेलेबल है। रजिस्टर करने के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए आदेश देसाई ऑन 07525687036। महाराष्ट्र दिवस 2026।
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: काश मेरा मेरी हो जाए, चाहे एक दिन के लिए सही।
10: एक मिनट के लिए मेरे आंखों में देखो।
11: A story full of heart, now on the big screen.
10: ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है।
9: पर कल तुम्हें ये दिन याद नहीं रहे।
11: Aamir Khan presents Ek Din is now showing in cinemas. Book your tickets and watch it today.
12: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
13: Like a Gold, London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे
14: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: or visit kfurniture.co.uk.
1: काश मेरा मेरी हो जाए, चाहे एक दिन के लिए सही।
2: एक मिनट के लिए मेरे आंखों में देखो।
3: A story full of heart now on the big screen.
4: ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है।
1: पर कल तुम्हें ये दिन याद नहीं रहेगा।
3: Aamir Khan presents Ek Din is now showing in cinemas. Book your tickets and watch it today.
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
6: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, it's a UK Asian Film Festival roundtable special hosted by Ruby Raza.
7: This is a festival that has been taking place for 28 years now.
8: We are having a big pop in getting people back into cinema.
9: There is a completely different game happening behind the scenes.
7: You've had stars like Zenith Aman attend.
6: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. This song is brought to you by Kumar Shanu, live at Royal Albert Hall with exclusive radio partner Leica Radio. One date only, May 25th.

0: बासमती राइस। दिशा बासमती राइस अवेलेबल एट कच्चा बाजार व्हाइट चैपल एंड बेक्टन ब्रांच। दिशा बासमती
1: राइस। इस साल महाराष्ट्र दिवस 2026 सेलिब्रेट कीजिए एक खास अंदाज में। सैटरडे 2 मई आइए लैंगली कॉलेज स्लाव। एंजॉय कीजिए मराठी लोक कला, ट्रेडिशनल स्टॉल्स, डिलीशियस महाराष्ट्रियन फूड और फैमिली एंटरटेनमेंट का फुल सेलिब्रेशन विद सिंगर्स फ्रॉम महाराष्ट्र। एंट्री सिर्फ 5 pounds। फैमिली ऑफर्स भी अवेलेबल है। रजिस्टर करने के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए आदेश देसाई ऑन 07525687036। महाराष्ट्र दिवस 2026।
2: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
3: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
4: Shikar jab tak nazron ke samne hai, teer chala dena chahiye.
5: कल सिवा इस पिंजरे में होगा जिंदा या मुर्दा।
6: वॉच राजा शिवाजी स्टारिंग रितेश देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन एंड विद्या बालन। Releasing in cinemas on 1st May.
7: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
8: Save even more this weekend with bank holiday offers in the Furniture Village sale. We've added new offers on sofas, dining, beds and bedroom furniture, and that's on top of sale prices. Bank holiday offers end Monday at Furniture Village, an award-winning family business.
9: Like a Radio Network, proud to support the Asian Founders Awards by Barclays Eagle Labs and De Montfort University Leicester. Nominate an Asian founder in one of the 9 categories. Log on to LaikaRadio.com and the Laika Radio mobile app for details. Deep Raja, waking you up every weekend. Laika.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: ये है Leica Gold.
2: Leica Gold Traffic and Travel.
3: The M25 in Surrey clockwise. All lanes have now been reopened. That vehicle that needed a tyre change earlier has all now been shifted away from there. So it's all clear between Staines at Junction 13 heading towards Heathrow for Junction 14. The M4 Heathrow Spur Road itself is clear now southbound before the tunnels entering the terminals area. Into Park Royal, North Circular Road, the A406 is slow going, heading down towards the Hanger Lane gyratory system. Into Brixton, that's Court Harbour Lane, and that's currently blocked both ways down to police incident, heading away from Baytree Road down towards Brixton Hill for the A23. I'm Liam Jones, that's the latest.
4: How does it feel to face the storm head on? Go beyond the map? Drive into the extreme? Or win a Ford Explorer? Test drive one before the end of May and you could win one. Now, how would that feel? Search Win a Ford Explorer. Ready, set, Ford. T's and C's apply. 25 plus only. See ford.co.uk for details.
5: This is Leica Gold.
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
7: विजिट TravelHubWorld.com.
8: हिल्लारो अने उम्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह पर एक वार लेने आवे छे एक इमोशनल कॉमेडी. एक यू हार्ट जी कई फील करतु नतु बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज्ड.
9: तमारो हृदय धबकारो चुकी जाय छे.
8: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आर्जव देसाई.
10: अहिना करेला अहिज भोगवाना छे.
8: इन सिनेमास नहीं आयू.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
13: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help 2 children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
14: एक मसालेदार चाय के बारे में सोचते ही बस एक ही नाम याद आए, यूनिक मसाला चाय. इस सर्दी मजा लीजिए यूनिक चाय के अलग अलग मसाले फ्लेवर्स का. सिर्फ गर्म पानी लो और यूनिक चाय के साथ घोल लो. सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सबकी फेवरेट यूनिक मसाला चाय तैयार.
13: For gold, silver and platinum bars you can trust, visit buybullion24.co.uk. Competitive prices, secure online buying and reliable service across the UK. For more details, WhatsApp on 073-7522-4418. Choose buybullion24.co.uk today.
15: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे.
16: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर.
15: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स.
16: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे.
15: दर्शन पण अने यूरोप पण.
16: सीट्स जल्दी भराई रही छे. आज ज बुक करो स्टार टूर साथे.
15: कॉल 0208900-2323. द स्टार टूर्स.
16: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
17: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com. T's and C's apply.
18: bank holiday offers end this Monday in the Furniture Village sale. Don't miss your last chance to save.
19: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
20: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: बासमती राइस।
1: दिशा बासमती राइस अवेलेबल एट कच्चा बाजार व्हाइट चैपल एंड बेक्टन ब्रांच।
0: दिशा बासमती राइस।
2: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
3: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन सालसा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
2: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
4: K Furniture's stock clearance sale is now on. Enjoy massive discounts in-store on Italian beds, bedroom and dining furniture, all available for immediate delivery. Buy a 3- and 2-seater recliner sofa for £999 and get a dining table and 4 chairs absolutely free. Hurry while stocks last. K Furniture, stores at Cricklewood, Harrow and Slough. Or visit kfurniture.co.uk.
5: Psst. You. Yeah, you. Listening to the radio. Up to whatever. We just wanted to let you know there's a lotto draw coming up, and
6: it could be you.
5: Yeah, what he said. Lotto, from the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
7: Leica Radio, finalist at the Radio Academy ARIA's 2026.

0: इतनी मिठास है इस गाने में, इतनी मीठी धुन बनाई है मदन मोहन ने और उस पर लता जी की आवाज़, मतलब कमाल का गाना है। इस गाने को सुनकर दिल खुश हो जाता है। और देखिए ये गाना कितने सालों पहले बना है, 1970 में आई थी ये फिल्म, लेकिन गीत आज भी तरोताज़ा है और दिल को खुश करते हैं। और उससे पहले आराधना का गीत सुना, सेम हाल उसी का भी है, एस डी बर्मन की धुन थी। 1969 में इस फिल्म को बनाया गया था, लेकिन गाने ऐसे हैं कि बस सदा बहार, और ये आप सबका भी कहना है। तो आज ऐसे कुछ गाने हमेशा की तरह सुनवाती रहूंगी प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ये है लाइका रेडियो नेटवर्क, जहाँ पर लाइका गोल्ड आप सुन रहे हैं इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो सुन रहे हैं आप इन ग्रेटर मैनचेस्टर, एंड लाइका रेडियो आप सुन रहे हैं मिडलैंड्स में। और जहां भी हमारे साथी हमारा साथ दे रहे हैं, यूके में या यूके से बाहर, सभी का स्वागत है इस शो में, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। आज है सैटरडे का दिन और हमारे यहाँ मौसम यहाँ थोड़ा बदल गया है। कल तो बड़ा शानदार था, अच्छी चमचमाती धूप थी, इवन रात को 9 बजे भी मौसम में ठंडक चुभने वाली नहीं थी, बहुत ही प्लेजेंट था मौसम। लेकिन आज टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया है, तो मौसम में कुछ ठंडक है, वैसे बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन आज बीच में कभी कभार बारिश भी हो सकती है, हो सकता है कहीं आपकी तरफ हो जाए, हर जगह तो नहीं लेकिन थोड़ी संभावना है आज बारिश की। लेकिन फिकर नॉट, बाहर का मौसम कैसा भी हो, यहाँ से गीतों का मौसम हमेशा, यस सही कहा आपने, सुहाना ही रहेगा। तो बस साथ देते रहिए। और देखिए हमारे विजय जी ने आज भी बहुत ही शानदार बात हमारे साथ शेयर की, और कहते हैं कि एक व्यक्ति ने एक फकीर से पूछा कि उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है, उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है। फकीर ने प्यार से कहा कि मौत से एक दिन पहले। तो व्यक्ति बोला, भाई मौत का तो कोई वक्त होता नहीं, हमें तो कैसे पता चलेगा कि मौत का कौन सा वक्त है। तो फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझो और जीने का आनंद लो, क्योंकि किसके पास कितनी सांसें हैं, कितनी घड़ियां हैं, कितना जीवन बचा है, ये तो कोई नहीं जानता।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो £1 आज आपको दे देगा 128 pounds, 101 pound आपको देगा 128 rupees, और जब आप ये ट्रांसफर करवाएंगे via SBI branch online और by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like our gold.
1: Pakistan cricket score updates. Brought to you by Remitly. Send money to Pakistan with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो आज तो पाकिस्तान सुपर लीग का कोई मैच है नहीं, लेकिन आपको पिछले मैच का हाल बता दें, जिसमें हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच खेला था और किंग्समैन ने उसे 2 रन से जीत लिया था।
1: Pakistan cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
2: ये है लाइका गोल्ड।
3: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
4: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
3: ये तो बताओ, कोई पता चला?
4: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
3: तो शुभकामनाएं, देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
5: शीघ्र।
4: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208 514 5400, बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
6: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।

0: यशुदास की आवाज में रविंद्र जैन के म्यूजिक पर तारा चंद बड़ जातिया की फिल्म चित चोट से लिया था ये गाना।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो चलिए आपको बताते चलें कि आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और मैं हूँ रितु शर्मा और आपके मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं। थैंक यू जासू जी आपके मैसेज के लिए। अरे सोनी वियाना में हमें सुन रहे हैं, गिरीश जी भारत में सुन रहे हैं हमें, संध्या भाव सर स्वागत है आपका, प्रज्ञा स्वागत है आपका इस शो में, और राजेश जी थैंक यू सो मच, आपने हमें आज का विचार भेजा है कि आशावाद परिवर्तन को सशक्त बनाता है। बिल्कुल सही कहा, थैंक यू, स्वागत है आपका। प्रकाश सोलंकी ब्रैकनेल में है, सलमा जी कैंट में है हमें सुन रही हैं, और ये मैसेज है वैंकूवर में इस समय 2:15 AM हो रहे हैं, और हरप्रीत क्या आप वैंकूवर पहुंच गई हो या अभी भी यहीं पर हो? थैंक यू आपके मैसेज के लिए, और मैं यही कहूँगी कि जब भी ये मैसेज भेजते हैं ना तो नीचे अपना नाम लिख दिया कीजिए, क्योंकि कुछ नाम यहाँ सेव नहीं होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि आप कौन हैं। थैंक यू अरुणा जी, योगेंद्र जैन जी, सुप्रभात, सुखी जी, भरत जी, मिस्टर पेके चियांग सावस, थैंक यू आपके मैसेज के लिए, सहर जी, महेंद्र पटेल, सुनीति, महेंद्र बजारिया, अयूब चौहान, मृदु जी, थैंक यू रोहिन, थैंक यू मनोज जी, आपको दो गाने बहुत सुंदर लगे, कहते हैं दो गीत सुनकर शुरू के मेरा आपने दिन बना दिया, क्या बात है। और ये है ऋतु बाली सुन रहे हैं हमें, इसके अलावा हरीश खत्री जी, अर्जुन जी, सुमन बद्रेसा, हमारे विजय गुडूरी जी, सभी का स्वागत है। एंड आप हमें सुनते रहिए क्योंकि प्रोग्राम के सेकंड वाले आवर में होती हैं यादें, और आज की यादें मैं उनको बात करूंगी जो मेरे बहुत फेवरेट सिंगर है। अब मैं किशोर कुमार की बात नहीं कर रही हूँ, एक और है, सोचिए कौन है, वरना मैं बताऊंगी अभी थोड़ी ही देर में।
1: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: हमारे महेंद्र जी का ये गाना ऑल टाइम फेवरेट है और कहते हैं मैं इसे फुल वॉल्यूम पर सुन रहा हूँ। बात तो सही है, गाने कुछ ऐसे हैं जो पसंद के होते हैं, जिन्हें फुल वॉल्यूम पर सुनने में ही मजा आता है। तो स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम में। ढेरों मैसेजेस आप मुझ तक पहुंचाते जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आपको गीतों में भी मजा आ रहा है और आप मेरा साथ भी दे रहे हैं। तो चलिए आपको बता दूं कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में यानी कि नेक्स्ट वाले आवर में होंगी यादें, और आज की यादें में हम बात करने वाले हैं उदित नारायण को। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाने उन्होंने गाए हैं। वैसे तो उन्होंने 90s के कुछ 80s के गाने बहुत सुंदर गाए हैं, लेकिन 2000 की फिल्मों के भी बहुत अच्छे गाने गाए हैं, जिन्हें हम यहाँ नहीं बजाएंगे। 90s के गीत कुछ आपको सुनाएंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में जो उन्होंने गाए हैं। तो आज की यादें में बात होगी उदित नारायण की।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
0: पर आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि भाई आज 11 बजे से कच्चा बाजार में पहुंच रही है लाइका रेडियो नेटवर्क की टीम, और वहां पर आप जा सकते हैं, दिशा बासमती राइस से बनी बिरयानी चख सकते हैं, उसके रिच फ्लेवर्स को एंजॉय कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। वहां पर हमारे लाइका रेडियो ब्रेकफास्ट के डोनी ब्रेस्को होंगे, अश्विनी होगी और रूमी भी होगी। तो जाइए वहाँ पर और मज़े के साथ बिरयानी खा कर आइए। कच्चा बाजार आपको बता दें पैक्टन लंदन E66LA, और आपकी सुविधा के लिए फ्री का पार्किंग भी अवेलेबल है।
1: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। फील गुड क्लासिक्स नॉन स्टॉप विद रितु शर्मा। दिस इज लाइका गोल्ड। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu chhe. Ek dhamakedar international Gujarati comedy.
8: Jay's Entertainment line avi rahya chhe. Sakhna re jo husband ji.
7: Leena Shah ane Sameer Shah saathe. Haasyani full guarantee. Shanivar 27 June na 27 Patidar Samaj Wembley Park ma. Ratna 8 vage. Tickets booking mate. Visit karo eventbrite.co.uk. Call karo Videorama. अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655। सखना रहो हसबंड जी।
1: Step into the new grand showroom of Kajal's Couture, Southall.
9: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
1: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
9: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
1: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
10: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
11: Lights on, shutters up, staff ready.
10: But today's customers don't start on the high street.
11: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
10: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
11: They walk into your competitors.
10: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
11: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
12: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
13: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
12: Call today on 01923 883 100,
13: or go to skylordcruiseandholidays.com.
12: Book with confidence.
13: We're atoll protected.
14: साढ़े दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तखत श्री हरमिंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही.
15: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
16: Save even more this weekend with bank holiday offers in the Furniture Village sale. We've added new offers on sofas, dining, beds and bedroom furniture, and that's on top of sale prices. Bank holiday offers end Monday at Furniture Village, an award-winning family business.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
17: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
1: Laika Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. This song is brought to you by Kumar Shanu, live at Royal Albert Hall with exclusive radio partner Laika Radio. One date only, May 25th.

कुमार चानू और अलका याग्निक की आवाजों में नदीम श्रवण के म्यूजिक पर बरसात फिल्म से था ये गाना जो 1995 में आई थी। और ऐसे ही बहुत सारे गाने सुनवाऊंगी आज प्रोग्राम के अगले हिस्से में, क्योंकि यादें में आज हम याद करने वाले हैं उदित नारायण को। लेकिन आपको बता दें कि कुमार सानू लंदन में लाइव परफॉर्म

0: मुझे पता नहीं है इस गाने के बारे में कौन सा है, और अगर आप ये मैं देखती हूँ, कोशिश करके बताऊंगी, लेकिन फिलहाल तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि योगेंद्र जैन हमसे कहते हैं कि अगले घंटे में तो हम 90s की यात्रा पर चलेंगे। हाँ जी बिल्कुल, हम 90s की यात्रा पर ही जाने वाले हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज £1 आपको देगा 1.3 US dollars, 128 भारतीय रुपए, 378 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 109.54 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: Leica Gold.
1: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में होने वाले आईपीएल मैच की। ये मैच दोपहर के 3 बजे से स्टार्ट होगा और मैच का हाल हम आपको बताएंगे, आप हमें सुनते रहिए।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द एफसीए।
3: ये है लाइका गोल्ड।
4: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
5: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
4: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
5: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
4: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Emprio Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागासन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट रागासन.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।

0: Disha Basmati Rice, available at Kacha Bazaar, Whitechapel and Beckton Branch. Disha Basmati
1: Rice. इस साल महाराष्ट्र दिवस 2026 सेलिब्रेट कीजिए एक खास अंदाज में. सैटरडे 2 मई आइए लैंगली कॉलेज स्लाव. एंजॉय कीजिए मराठी लोक कला, ट्रेडिशनल स्टॉल्स, डिलीशियस महाराष्ट्रियन फूड और फैमिली एंटरटेनमेंट का फुल सेलिब्रेशन विद सिंगर्स फ्रॉम महाराष्ट्र. एंट्री सिर्फ 5 pounds. फैमिली ऑफर्स भी अवेलेबल है. रजिस्टर करने के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए आदेश देसाई ऑन 07525687036. महाराष्ट्र दिवस 2026. लोकेशन लोकेशन लोकेशन.
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर.
3: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
4: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन.
3: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स.
4: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ अमेनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी.
3: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000.
4: टू बुक

0: मजरूह सुल्तानपुरी ने इस खूबसूरत गीत को लिखा है और आरडी बर्मन ने इसकी धुन बनाई है। और हमारे गिरीश जी कहते हैं कि ये गाना मेरे नाम कीजिए। एंड योगेंद्र जैन कहते हैं कि स्कूल कॉलेजेस में आपने इस गाने पर खूब पैरोडी बनाई है, तो मैं ये कहूँगी कि स्कूल और कॉलेज के एनुअल फंक्शंस में इस गाने को हमने कई बार गाया है, क्योंकि इसके बोल इतने अच्छे हैं, धुन इतनी सुंदर है कि गाने में भी मज़ा आता है और सुनने में भी मज़ा आता है। आपको याद दिला दूँ प्रोग्राम के अगले हिस्से में कुछ ऐसे और सुंदर गीत आप सुनेंगे मेरे साथ यादें में, क्योंकि आज की यादें में हम याद करने वाले हैं उस आवाज़ को जो मुस्कुराती हुई आवाज़ है, उदित नारायण की आवाज़। बहुत सुंदर गाने हैं उनके और ढेर सारे गाने हैं। कुछ गाने मैंने चूज़ किए हैं जिन्हें सुनवाऊंगी और उनके बारे में कुछ बातें भी आपको बताऊंगी। तो आप बस हमारा साथ यूं ही देते रहिए। और आपको बताते चलूं कि इस समय ऋतु शर्मा है आपके साथ, 1 बजे तक आपके साथ ही रहेगी।
1: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
2: From Sky News Centre at 11. NATO says it's still confident in its defence capabilities despite the US withdrawing 5,000 troops from Germany. This after the German Chancellor criticised Donald Trump's strategy in Iran. The American president threatened to blast the hell out of the country if a deal isn't reached. Mariana Spaljoric is president of the International Committee of the Red Cross.
3: The humanitarian situation at the moment is under control in Iran, but the escalation will be of a scale that we as humanitarians will not be able to absorb. It is a very dangerous situation that risks going beyond the point of no return. We have to start de-escalating.
2: There's fresh rumours of plots to oust Sir Keir Starmer. It's been reported in The Guardian that Greater Manchester Mayor Andy Burnham has a plan to return to Westminster within weeks, while The Telegraph claims Health Secretary Wes Streeting is also looking to unseat the Prime Minister. With elections just days away, former Conservative Chancellor Kwasi Kwarteng predicts dire results for the PM.
4: All the projections are saying that Labour could lose 1,800 council seats. They currently hold something like 2,500. Losing 70% of your councillors in one election, I think, is an existential issue. And I think they will have to do something.
2: The government is resisting calls to ban pro-Palestinian marches in the light of recent anti-Semitic attacks. The Prime Minister has called for people taking part to call out any racist language. Two people have been stabbed during a night of violence in Southend. Around 30 people were involved in fights in the city. Police have confirmed that no items of a suspicious nature were found at last night's cancelled Peter Kay concert. A teenager has been arrested on suspicion of carrying out a bomb hoax. Well, in sport, Ipswich are in a driving seat for automatic promotion to the Premier League, going to the final day of the regular Championship season. A win against QPR this lunchtime would seal their return to the top flight alongside champions Coventry. They end their campaign at Watford. That's the latest. I'm Charlie Max.
1: Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.
5: Craving a little sunshine? Virgin Atlantic Holidays has the answer. This is your sign to high-five a superhero before breakfast in Florida, or rainforest trek to hidden waterfalls in the Caribbean, or step off your pier into the bluest of blue water in the Maldives. With Flying Club, save up to £300 this bank holiday weekend. Book in store, over the phone or online at Virgin Atlantic Holidays. Select routes. For T's and C's, visit virginatlantic.com. ATL protected.
1: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: तो चलिए एक बार फिर से हो जाए मौसम की बात। आज लंदन में मौसम अच्छा है, लेकिन कभी कभार थंडर के साथ बारिश हो सकती है। मैक्सिमम टेम्परेचर आज लंदन में 22 डिग्री तक रहेगा। मैनचेस्टर में आज बादल छाए रहेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 19 डिग्री तक जाएगा। और मिडलैंड्स में मैक्सिमम टेम्परेचर आज 17 से 18 डिग्री के बीच तक ही रहेगा।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. This is Leica Gold. Flight updates brought to you by Brightsun Travel. Make travel fun. Book with Brightsun. Leica Gold.
0: चलिए तो फिर बात कर लेते हैं दिल्ली से आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 111 की। अराइवल टाइम है इसका 11:30, लेकिन 4 मिनट पहले यानी कि 11:26 पर हीथ्रो टर्मिनल 2 पर ये फ्लाइट लैंड करेगी।
1: Celebrating Bright Sun Travel's 40th anniversary. Bright Sun are giving £40 off per adult on hand-picked holidays, plus upgrades, kids stay or eat free offers, free tours and transfers and more. Visit the website for details at brightsun.co.uk/40. Ritu Sharma.
0: सही सुना आपने, मैं रितु शर्मा ही हूँ और ये है प्रोग्राम का सेकंड आवर जिसमें होती है यादें। और आज हम याद करने वाले हैं उदित नारायण झा को। कहते हैं जिनकी आवाज शहद जैसी मीठी है और जिन्होंने बहुत सारे
1: like gold. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
6: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
7: TravelHub.
6: At all protected.
1: Leica. Ritu Sharma live on Leica Gold, Greater London.

0: कयामत से कयामत तक फिल्म से था ये गाना, आनंद मिलिंद का म्यूजिक, उदित नारायण और अलका जी की आवाज। और आपको बता दें कि इस फिल्म के गीतों के लिए खास तौर पर वो गाना पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, उदित नारायण ने फिल्म फेयर का बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जीता था और इसमें आनंद मिलिंद को भी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। और ऐसे अनेकों गाने उदित नारायण ने गाए हैं जो एक से बढ़कर एक है, और ऐसे ही कुछ गाने आज मैं आपको सुनवाने वाली हूँ यादें में, क्योंकि आज की हमारे यादें का सुपर स्टारा है उदित नारायण, जिन्होंने बॉलीवुड में लगभग हिंदी के अलावा 36 से ज़्यादा भाषाओं में 36,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। और 1980 में इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की थी और इन्हें सबसे पहली बार मौका मिला था 80s की एक फिल्म में, और वो फिल्म कौन सी थी मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये बताऊंगी कि उनकी आवाज़ के लिए कहा जाता है कि उनकी आवाज़ में एक स्वाभाविक मुस्कान है और एक मिठास है। उदित नारायण झा इनका पूरा नाम है और 1955 में बॉर्न है, तो इस साल 2026 में 71 ईयर्स के हो जाएंगे उदित नारायण। नेपाल में इनका जन्म हुआ है, सप्तरी एक जिले में, और कहते हैं बिहार से भी इनके कुछ संबंध हैं, लेकिन ज़्यादातर अपनी एजुकेशन इन्होंने नेपाल में ही की है। और जब नेपाल में इन्होंने म्यूज़िक सीखा उसके बाद म्यूज़िक की और बारीकियों को सीखने के लिए इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की। और कहने वाले ये भी कहते हैं जो इन्हें जानते हैं कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत रेडियो नेपाल से एक फोक सिंगर के रूप में की थी, वहाँ पर ये फोक सॉन्ग्स गाया करते थे। और 1970s के दशक से फिर वो जब वो बहुत अच्छा गाते थे तो फिर उन्हें बाद में और अच्छी एजुकेशन के लिए मुंबई भेजा गया। उन्हें पहला ब्रेक मिला था 1980 की फिल्म 1920 में, जिसमें उन्हें मोहम्मद रफ़ी के साथ एक गाना गाना था। बताऊंगी कि जब वो मौका इन्हें मिला रफ़ी साहब के साथ गीत गाने का उसमें क्या हुआ, लेकिन फिलहाल एक और गीत आपको सुनवा देते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो 1 pound के बदले में आज आपको 128 भारतीय रुपए मिल जाएंगे, लेकिन ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online और by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
1: Pakistan cricket score updates brought to you by Remitly. Send money to Pakistan with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो आज तो पाकिस्तान सुपर लीग का कोई मैच है नहीं, लेकिन आपको बता दें कि जो मैच हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में हुआ था उसे किंग्समैन ने 2 run से जीत लिया है।
1: पाकिस्तान क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: ये है लाइका गोल्ड।

0: जब 1993 में ये फिल्म आई थी तो इस फिल्म के गाने सब तरफ हर वक्त बजते थे और इन गीतों के साथ उदित नारायण छा गए थे। एक से बढ़कर एक गाने इस फिल्म के, और उदित नारायण ने इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाई है, इतने खूबसूरत गाने हैं उनके कि मैं इतने कन्फ्यूजन में हूँ कि कौन सा गाना बजा दूँ कौन सा छोड़ दूँ, जैसे कि हालत मेरी हर बार रहती है। लेकिन आज मैं आपको एक किस्सा सुनाने वाली हूँ, और ये किस्सा है उनके पहले गाने से जुड़ा हुआ, जब उन्हें पहली बार रफी साहब के साथ गीत गाने का मौका मिला।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो जब रफ़ी साहब को पहली फिल्म मिली जो 1980 में आई थी, जिसका नाम था 1920, उसके एक गीत के लिए चुना गया और उन्हें पता चला कि वो अपने फेवरेट सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ गाना गाने जा रहे हैं, तो उदित नारायण की क्या हालत थी उसे बयां नहीं किया जा सकता। वो बहुत घबराए हुए थे, उनके पैर कांप रहे थे, और जब रफ़ी साहब स्टूडियो पहुँचे तो उदित जी उन्हें देखकर दूर एक कोने में खड़े हो गए और अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगे। रफ़ी साहब ने पूछा कि भाई कौन है वो लड़का जो मेरे साथ गाना गाने वाला है, तो उन्हें बताया गया कि वो उदित है, वो देखो वहाँ खड़ा है। उनकी हालत देखकर रफ़ी साहब को लगा कि ये लड़का बहुत घबराया हुआ है। रफ़ी साहब तुरंत उनके पास गए क्योंकि उन्होंने उदित जी की घबराहट को भांप लिया था, और उनके कंधे पर हाथ रखा, मुस्कुराते हुए कहा, बेटा डरो मत, तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है, बस दिल खोल कर गाओ। और रफ़ी साहब की इन बातों ने, इस वाक्य ने उदित जी को बहुत सहारा दिया, और उदित जी का कहना है कि वो पल उनके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं थे, और आज भी वो उन पलों को, उन बातों को अपने जीवन का सबसे अनमोल पल मानते हैं, जब रफ़ी साहब ने उनके सर पर हाथ रखा था और उनसे कुछ बातें कही थी।
1: ये है Laika Gold Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles.

0: दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से था ये गाना, और इस गाने में आवाज थी अलका याग्निक के साथ उदित नारायण की, जिन्हें आज हम यादें में याद कर रहे हैं और उनके बारे में कुछ बातें, उनसे जुड़े कुछ किस्से सुना रही हूँ। एक और किस्सा मैं आपको सुनवाने वाली हूँ, जब उनकी फिल्म आई थी कयामत से कयामत तक।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: तो जब उदित नारायण की पहली फिल्म जिसमें उन्होंने गाने गाए थे वो फिल्म रिलीज हुई थी तो वो बहुत हिट हो गए थे, लेकिन उन्हें इस बात का इतना अंदाजा नहीं था। और उस समय उदित जी के पास खुद की गाड़ी भी नहीं थी, वो बस और ऑटो से ही सफ़र किया करते थे। और ऐसे ही एक बार की बात है, जब वो बस में सफ़र कर रहे थे और उनके ठीक पीछे बैठे कुछ लड़के रेडियो पर बज रहे गाना जो पापा कहते हैं उस पर झूम रहे थे, और इस गाने के जो सिंगर उदित नारायण है उनकी तारीफों की पुल बांध रहे थे। और उन्हें शायद नहीं पता था कि उदित नारायण उनके जस्ट सामने वाली सीट पर ही बैठे हैं, और उदित जी उनकी बातें सुन सुनकर चुपचाप मुस्कुरा रहे थे और खुश भी हो रहे थे। और वो अपनी सीट पर बैठे बैठे सोच रहे थे कि क्या इन्हें मैं बता दूं कि जिसकी बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। बार बार उनका दिल चाह रहा था कि पलट कर उन्हें बता देता हूँ कि जिसकी बातें कर रहे हो भाई वो मैं ही हूँ, लेकिन उनकी सादगी ने उन्हें रोक लिया और उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अगले स्टॉप पर उतर गए। लेकिन उनको शायद एहसास हो गया था कि उनके गाए हुए गीतों को लोग पसंद कर रहे हैं और उनकी आवाज को भी कितना प्यार मिल रहा है।
1: Riti Sharma on Like a Gold।
0: और अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि भाई लाइका रेडियो नेटवर्क की टीम पहुंच चुकी है कच्चा बाजार में। 11 बजे से वो लोग वहां पर हैं और वहां पर दिशा बासमती राइस बिरयानी की टेस्टिंग चल रही है, तो आप भी चले जाइए अगर आपके पास समय है, जाकर देखिए कि दिशा बासमती राइस से किस तरह की स्वादिष्ट बिरयानी और कुछ बनाया जा सकता है। जहां पर आपको डॉनी ब्रेस्को मिलेंगे, अश्विनी मिलेगी, रूमी भी मिलेगी। और आपको पता बता दें, कच्चा बाजार बैक्टन लंदन E66LA, फ्री कार पार्किंग भी अवेलेबल है। और अभी थोड़ी ही देर में हम उनसे आपकी बात भी करवाएंगे कि वहां पर क्या माहौल है और क्या कुछ हो रहा है। हमारा साथ देते रहिए।
1: The Riti Sharma Show with Riti Sharma. Like a Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. Like a Extra podcast update.
0: तो आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा का नया पॉडकास्ट, नया एपिसोड आ गया है, और इस एपिसोड को होस्ट किया है रूबी रजा ने, और इसका टॉपिक है द UKAFF राउंड टेबल। और लाइका एक्स्ट्रा को आप सुन सकते हैं स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल और अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। ये है Like a Gold TravelHubWorld.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट TravelHubWorld.com।
3: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208922 3444 24 hour line।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Packed for the trip? Gifts? Passport?
7: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
6: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
7: Simzy?
6: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
2: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
8: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
9: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
8: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
9: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
8: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
10: Royal announcement by Royal Chai. Chai is loved by all and so is coffee. Here's presenting a brand new coffee latte in three different and delectable concoctions. Enjoy the royal blend and aroma of coffee in masala, cardamom and garlic flavors. Taste the coffee latte with a quirk by Royal Chai. Now available at all major retailers.
11: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स
12: जस्ट एड हॉट वाटर वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी शीरा पोहा भाजी वेज बिरयानी दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट
11: जीरो मेस नो स्ट्रेस सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
14: काश मेरा मेरी हो जाए चाहे एक दिन के लिए सही
15: एक मिनट के लिए मेरे आंखों में देखो
16: A story full of heart, now on the big screen.
17: ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है।
14: पर कल तो मैं ये दिन याद नहीं रहे।
16: Aamir Khan presents Ek Din is now showing in cinemas. Book your tickets and watch it today.
18: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસ માં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે
19: બીએપીએસ મંદિર નું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર
18: યુરોપ ના 3-9 દિવસ ના ટૂર્સ
19: ફ્રાન્સ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ઇટલી અને જર્મની સાથે
18: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ
19: સીટ જલ્દી ભરાઈ રહી છે આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે
18: કોલ 02089002323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ
19: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન
20: લાઈક અ રેડિયો નેટવર્ક પ્રાઉડ હોસ્પિટાલિટી પાર્ટનર રાગસન On this week's Leica Extra podcast, it's a UK Asian Film Festival roundtable special hosted by Ruby Raza.
21: It's such a pleasure to welcome the team of the UK Asian Film Festival.
22: What is particularly very touching for me, a lot of these films will never see the light of day. They won't get distribution. So if you miss them at these festivals, it's gone.
20: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
2: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Europe to faraway places, the same delicious Indian food. Wherever you go, that's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी करम, क्या गाना है उदित जी और अलका याग्निक की आवाजों में। और अगला गीत सुनाने से पहले मैं बात करवाने वाली हूँ आपकी हमारे डोनी ब्रेस्को से, जो कि लाइका रेडियो के ब्रेकफास्ट शो प्रेजेंटर हैं और पहुंच चुके हैं कच्चा बाजार में, जहां पर आज दिशा बासमती राइस से बनी हुई बिरयानी की स्वादिष्ट टेस्टिंग हो रही है। तो चलिए जानते हैं वहां का क्या हाल है और क्या हो रहा है। हाय डोनी। हाय डोनी, हाउ आर यू?
1: Hi Ritu, how are you doing? You okay?
0: Yeah, I'm fine. Batao, kya ho raha hai wahan pe?
1: I'm here with Sunil actually. He's the CEO of Iris Foods, mm-hmm. and he's basically supporting Disha Basmati Rice. What's happened is it's crazy, Ritu, right? So there's a massive community of East London Bengali community here. There's a lot of people that eat a lot of food, and basically, as we know, cost of living is ridiculous, right? The price of stuff is ridiculous. Fish is one of the best things to eat in the entire world. And there is a young man here who's quite good with the

0: मैं भी आप सबसे यही कहूंगी, कभी अलविदा ना कहना। ब्यूटीफुल गाना, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट, किशोरदा की आवाज में, 1976 के फिल्म चलते चलते से था, और ये एक शानदार गाना बनाया है, जानते हैं किसने? बप्पी दाने, यस, जो हमारे डिस्को किंग रहे हैं। लेकिन देखिए, एक आर्टिस्ट की खूबी वही होती है, सच्चे इंसान की खूबी, जो हर तरह के काम में महारत हासिल करता है। और देखिए, डिस्को के गाने भी कमाल बनाए, और इस तरह के गीत भी बप्पी दाने क्या खूबसूरत बनाए हैं। दिनेश जी भी कहते हैं कभी अलविदा ना कहना, तो दिनेश जी आपसे भी मैं ये कहूँगी, कभी अलविदा ना कहना। और इसके साथ साथ शुमिला मंगर, संध्या भावसर, नाजिया शकील, मीनल थैंक यू कहती हैं, थैंक यू, आपने मेरा सैटरडे आज भी फिर से अच्छा सुहाना बना दिया, स्वागत है आपका। योगेंद्र जैन कहते हैं अद्भुत संगीत संयोजन, क्या बात है, मेरी हिंदी दिन पर दिन अच्छी होती जा रही है, आप सब नए नए वर्ड्स मुझे बताते जा रहे हैं, कमाल है, आई लाइक इट। जासू जी स्वागत है आपका। वंदना जी कहती है आज थोड़ा मैं लेट हो गई, तो कहाँ गई थी बताइए, एबसेंट नहीं लगाऊंगी आपकी, मैंने प्रेजेंट लगा दिए क्योंकि आप आ गई हैं, कोई बात नहीं। राजीव जी थैंक यू, भारती दीदी थैंक यू, विजय गुनोवा जी थैंक यू, सभी के मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं, और आप जानते हैं ना, और रितेश को भी हेलो कह देते हैं। तो इस वाले आवर में हम थ्री वर्ड्स गेम खेलते हैं, और मैं आपको कुछ ब्लैक एंड वाइट क्लासिक्स भी सुनवाऊंगी, जिसका सिलसिला होगा अभी शुरू, लेकिन फिलहाल बात करते हैं तीन वर्ड्स गेम की, थ्री वर्ड्स गेम की। तो आज का ये जो गाना है बहुत ही पॉपुलर गाना है, और एक बार फिर से इसमें किशोरदा की आवाज़ है, आर डी बर्मन का म्यूज़िक है, और ये फिल्म 1976 की फिल्म है, 1976 में आई थी ये फिल्म, और देखिए जो गाना सुनवाया वो भी 1976 का था, क्या बात है। तो पहला वर्ड है मन, दूसरा वर्ड है नैना, और तीसरा वर्ड है सावन, बताइए कौन सा गाना है, मन, नैना, सावन, 1976 की फिल्म, किशोर कुमार की आवाज़, आर डी बर्मन का म्यूज़िक। अगर आपको पता चल गया है, जो मुझे पता है कि पता चल गया होगा क्योंकि गाना बहुत पॉपुलर है, तो देर किस बात की है, अपना मैसेज भिजवाइए ना हमारे इस नंबर पर।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज £1 आपको देगा 128 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ट्रांसफर करवाना होगा पाया SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Like a Gold. Pakistan Cricket Score Updates. Brought to you by Remitly. Send money to Pakistan with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England Cricket.
0: तो पाकिस्तान का आज तो कोई मैच है नहीं, लेकिन जो पिछला मैच था हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में, जिसे हैदराबाद किंग्समैन ने 2 रन से जीत लिया था।
1: पाकिस्तान क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द एफसीए। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
2: ये है Like a Gold 10:35 AM
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on travelhubworld.com. flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। call travelhub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
4: travelhub best service with unbeatable price
5: at all protected.
4: visit travelhubworld.com.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash in carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
5: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
7: In Dubai.
8: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
9: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
8: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
9: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
10: Discover the best of Portugal with a fantastic Lisbon and Porto Twin City centre break with Skylord. Fly from the UK and spend 3 nights exploring vibrant Lisbon with its historic streets, trams and riverside views. Then travel by train to beautiful Porto for 3 more nights, discovering its famous wine cellars and charming old town. Skylord prices start from just £339 per person. For multi-centre city break packages with a difference, see skylordcruiseandholidays.com.
11: Call 01923 883 3100. Atoll protected.
12: शिकार जब तक नजरों के सामने है, तीर चला देना चाहिए।
13: कल सिवाय इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
14: वॉच राजा शिवाजी स्टारिंग रितेश देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन एंड विद्या बालन। Releasing in cinemas on 1st May.
15: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 02003-773-633 now. APTA bonded.
16: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
17: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
18: No more worries for me.
19: Southall Travel, at all protected.
20: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
21: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। लता जी की आवाज, किशोर दा की आवाज और म्यूजिक बाय कल्याण जी आरएन जी। और आप सब जानते हैं कि इस बार के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक कल्याण जी आनंद जी ही हैं, जिन्होंने एक से बढ़कर एक कमाल के गाने बनाए हैं और ऐसे ही गाने आप हर आवर में हमारे यहाँ से सुन रहे हैं। आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं और मेरा थ्रीवर्स गेम का आपने जवाब भी दिया है, तो किन्होंने सही जवाब दिया है उनके नाम भी लूंगी। लेकिन सबसे पहले आपकी हम बात करवाएंगे अश्विनी से। जैसा कि हमने आपको बताया कि लाइका रेडियो नेटवर्क की टीम पहुंची हुई है कच्चा बाजार, और जहां पर दिशा बासमती राइस से बनी बिरयानी को चखा जा रहा है। तो चलिए अश्विनी से बात करते हैं कि क्या चल रहा है वहां पे। हाय अश्विनी, तुमने बिरयानी खाई या नहीं अब तक?
1: हाय रितु, मैं यहीं पे दिशा बासमती राइस के स्टॉल पे खड़ी हूँ। यहाँ पे ये जो बिरयानी है वो इतनी लज्जतदार दिख रही है और यहाँ पे इतनी भीड़ है और इतना मजा आ रहा है, बिकॉज ये बिरयानी जो है ना, इसका फ्रेग्रेंस लोगों को खींच के ला रहा है। और ये राइस के दाने इतने लंबे और इतने बढ़िया, मतलब अमेजिंग सा लग रहा है कि लोग वो बिरयानी की जो महक है उसकी खुशबू से भी वो खींचे चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे ना स्पेशल दिशा बासमती सुप्रीम ये जो राइस है, जो प्रीमियम राइस है, ये 10 किलो राइस है वो 1199 में है। एंड इनसे हम बात कराते हैं। ये मैडम जो है, तब से सबको बिरयानी सर्व किया जा रही, तो अभी कितने लोग आके गए यहाँ पे?
2: बहुत ज्यादा, आई मीन जितना फुटफॉल है इट्स बीन अ सक्सेस। इतना अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग आ रहे फ्रॉम द कम्युनिटी एंड दे लविंग द बिरयानी। आई थिंक अभी तक वी हैव हैड 500 प्लस पीपल ऑलरेडी कम।
1: तो 500 प्लस पीपल ऑलरेडी आ चुके हैं और अभी तो जो है पूरा माहौल शुरू हो रहा है। और ये जो भाई साहब है, भाई जरा इधर आइए, आप आइए जरा। मुझे लगता है ये जिस तरीके से अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं ना, तो कहीं आप हमारे रेडियो के जॉब्स ना लेना। हाँ, तुम्हारा नाम क्या भाई?
3: ब्रांड के लिए काम करता हूँ। आज हम फूड बाजार मैक्टन रिटेल स्टोर में है। आज इनकी 8th एनिवर्सरी है। फूड बाजार फिफ्थ सेल है। इधर हमने हमारे ब्रांड का प्री टेस्टिंग चलाया है। वो बिरयानी बनाई है, वेज बिरयानी, बहुत शानदार है, टेस्टी है। टेस्ट लाइक अ वाव,
1: टेस्ट लाइक अ वाव।
3: एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, इट इज बेस्ट फॉर ऑल राइस डिशेस। और आज स्पेशल ऑफर है 10 किलो 1099। ऑल्सो आप बाय राइस की एक बैग बाय करो और 1 केस लिक्विड डेट स्पार्कलिंग वाटर फ्री, उसमें 12 कैन आते हैं। एक राइस बैग के साथ 1 केस वाटर फ्री,
1: मतलब देखिए राइस का राइस मिल रहा है और यहाँ पे स्पार्कलिंग वाटर भी मिल रहा है। एंड हाउ लॉन्ग इज द स्कीम, कितने दिन के लिए?
3: ये 3 दिनों तक चलेगी। आज पहला दिन है, मंडे तक है, बैंक हॉलीडे वीकेंड तक।
1: तो ये जो राइस के पैकेट्स यहाँ पे रखे हैं, मेरा भी अभी दिल ललचा रहा है कि मैं ये यहाँ से एक पैकेट उठा के लेके जाऊंगी। तो जरूर आइएगा 3 दिन के लिए, यहाँ पे अभी ये ऑफर चल रही है। नहीं तो ओवर टू यू, हम लोग फिर 1 घंटे बाद बात करेंगे और आपको यहाँ का अपडेट देंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत भीड़ है और इतनी आवाज है ना। थैंकफुली हमारे हेडफोन्स है, उसकी वजह से मैं आपको क्लियरली सुन सकती हूँ।
0: चलिए थैंक यू अश्विनी, जरूर नेक्स्ट वाले आवर में आपसे फिर से बात होगी। बाय बाय।
1: ओके रितु,
0: तो लीजिए आपने जाना कि वहाँ पर क्या रौनक लगी हुई है, आप भी जा सकते हैं। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इनफैक्ट शुरू करने जा रहे हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला। पहला गीत सुनवाते हैं।
4: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: जस किशोर दा की आवाज़ में ये था हमारे आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का पहला गाना, जिसमें शंकर जय किशन का म्यूज़िक था। और जासू जी का कहना है कि ये गाना अरे तो मेरे नाम कर दो। चलिए कर दिया मैंने आपके नाम, आपको मज़ा आया तो ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Ritu Sharma.
0: तो आप पहला ब्लैक एंड वाइट क्लासिक सुन चुके हैं और अब शुरू कर रही हूँ दूसरे ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का सिलसिला, जिसमें आवाज़ है मुकेश जी के। लेकिन उससे पहले विजय जी, आपने अपने घर की फ़ोटो भेजी है, क्या फ्लावर्स लगाए हैं आपने, मतलब खूब मेहनत की है। और ये मौसम ऐसा है कि इस समय जो सीजनल फ्लावर्स होते हैं वो खूब अच्छे खिलते हैं, और मुझे फ़ोटो देख कर लग रहा है कि वाओ खूब मेहनत है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बहुत ही सुंदरता से आपने ये काम किया है। और ये कमाल आपका तो है ही, साथ ही साथ हमारे रेडियो का भी है क्योंकि रेडियो सुनते सुनते काम आप एक दो तीन घंटे भी कर लेते हैं, पता नहीं चलता। मैं तो खैर ऐसा ही करती हूँ, सो थैंक यू। और अब सुनवा देते हैं आपको आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का दूसरा गाना,
1: रिचि शर्मा ऑन लाइक अ गर्ल।
3: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: मुकेश जी की आवाज में था ये गाना जिसे आपने अभी सुना, लाइका रेडियो नेटवर्क से, जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और इस गाने को शंकर जयकिशन ने म्यूजिक से सजाया था और ये थे हमारे आज के दो ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स के गाने। और अब थ्री बस गेम चल रहा है जिसमें मुझे बहुत सारे आंसर्स मिले हैं और कुछ को छोड़कर सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो सबसे पहला सही जवाब दिया है स्वाति, आपने वेज वाटर से उल्लास टोरंटो में सुन रहे हैं। दिनेश पोपट जी, नरेन पटेल हाजरा, इतेश कुमार, जयंती परमार वेलिंगब्रो में, दामिनी बेन, रुखसाना अफजल, दिव्या जी हैरो से, निमिषा पटेल, राजीव पटेल, अयूब चौहान, विजय गुरूरी जी, गिरीश जी भारत में सुन रहे हैं, संध्या भावसर, करसन पिंडोरिया, नीलकंठ जी वोकिंगम में है, नाजिया शकील सहर, रोशनी महरुख, शुमिला मंगर, भविष्या, अर्जुन जी, योगेंद्र जैन, अमर जी, क्या बात है, आज आप सभी ने बिल्कुल सही पहचान लिया है। और जब सही पहचान लिया ही है तो देर किस बात की है, सुनवा दूं? चलिए सुनवाती हूँ वो गाना आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है Laika Gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com.
4: Are we there yet?
5: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
5: How? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simsy before we left London.
5: Simsy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
6: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
4: T's and C's apply.
7: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
8: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
7: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
8: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
7: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
10: काश मेरा मेरी हो जाए, चाहे एक दिन के लिए सही,
11: एक मिनट के लिए मेरे आंखों में देखो।
12: A story full of heart, now on the big screen.
13: ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है।
10: पर कल तुम्हें ये दिन याद नहीं रहेगा।
12: Aamir Khan presents Ek Din is now showing in cinemas. Book your tickets and watch it today.
14: Holiday offers end this Monday in the Furniture Village sale. Don't miss your last chance to save.
15: Voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs.
16: Borderless World presents Atif Aslam live in the UK.
15: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
16: Book your tickets now at AXS.
15: Denby Productions, supported by Rianne's Music.
16: Exclusive radio partner, Laika Radio.
1: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Laika Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales@laikamedia.co.uk.
17: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: आरडी बर्मन के म्यूजिक पर हमारे आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गीत था ये, किशोर दा की आवाज में, जिसे आप में से ज्यादातर साथियों ने सही पहचाना।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
2: Ye hai Like a Gold. Like a Gold.
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 1.28 भारतीय रुपए, 378 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
3: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5.

0: cash back when you use the code LIKER. Download LEMFI now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: So Gold Rate is 109.5 pounds per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. India cricket score updates, brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: तो आज चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियन के बीच में मैच होगा। ये मैच शुरू होगा दोपहर के 3 बजे से और मैच का हाल हम आपको बताएंगे, आप हमें सुनते रहिए।
0: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: तो लीजिए बस आज का साथ यहीं तक, अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज तक। न्यूज के उस पार आप क्या साथ देंगे अनुराग? लाइका गोल्ड पर फजीला होंगी, लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर एंड मिडलैंड्स पर होंगी अनिका। कल मिलूंगी आपसे, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।
2: ये है लाइका गोल्ड। 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी
3: जेज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रे जो हसबंड जी
2: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी शनिवार 27 जून ना 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे। टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655। सखणा रे जो हसबंड जी।
4: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
5: अरे गुरु, आपके शो के टिकट ढूंढ रहा हूँ।
4: ये तो बताओ, कोई पता चला?
6: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
7: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
4: शीघ्र शीघ्र।
6: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
8: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.

0: आमिर खान और पूजा भट्ट स्टार रही है फिल्म दिल है कि मानता नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी मिस की होगी। कमाल की फिल्म। सानुदा और अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में ये फिल्म का गाना रिकॉर्ड किया गया, और वैसे तो इस फिल्म में तमाम गाने हैं लेकिन ये गाना एक अलग पहचान बनाता है, और खुद पूजा भट्ट जी के लिए भी ये गाना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहा जा सकता है कि डेब्यू फिल्म उनकी, और आमिर खान साहब उनके अपोजिट। सबसे पहले भट्ट साहब का स्टाइल था क्योंकि भट्ट साहब ही इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे, और नदीम श्रवण साहब का खूबसूरत संगीत था। पूजा भट्ट जी को जब पहले दिन लोकेशन पे ले जाया गया बिना कुछ बताए, पता चला कि गाना रिकॉर्ड किया जा रहा है, और अनुराधा जी की आवाज पर पूजा भट्ट को लिपसिंग करनी थी लेकिन उनसे वो भी नहीं हो पा रहा था, इतनी डरी सहमी। भट्ट साहब बार बार कह रहे थे पूजा सिंह सिंह गाना गाओ यार, लेकिन पूजा की जो गिक्की बनी हुई थी। फिर इसके बाद सेट का माहौल जो है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने के लिए भट्ट साहब ने क्या किया, एक पैतरा निकाला कि सेट पर मौजूद जितने भी टेक्नीशियंस हैं, लाइट मैन हैं, सब लोग इस गाने को गाएंगे, और यही किया गया। उसके बाद लिपसिंग की गई, और उससे पहले की जो प्रिपरेशन थी, अनुराधा पौडवाल जी ने खुद पूजा को अपने घर बुलाया और उनसे कहा कि तुम बस मुझसे बात करो। पूजा ने कहा भाई क्यों बात करें और आपने क्यों मुझे बुलाया, तो अनुराधा जी ने कहा कि मैं सारे नोट्स तुम्हारे देखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस गाने में तुम्हारी झलक नजर आए, और वही मासूमियत, वही खूबसूरती, वही नादानी पूजा भट्ट के चेहरे पे इस गाने को फिल्माते हुए दिखाई दी गई है। रोमांटिक कॉमेडी 1991 में नदीम श्रवण साहब का खूबसूरत संगीत। इसी के साथ स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है गोल्डन राग की सुरों से सजी वीकेंड वाली इस पाठशाला में। इंतजार कीजिए, आज के गोल्डन वर्ड का दिमाग की बत्ती जलाने का वक्त आने वाला है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 128 रुपीस। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like a gold.
1: Pakistan cricket score updates. Brought to you by Remitly. Send money to Pakistan with Remitly. Great rates and low fees. Remitly. Proud to be the official partner of England cricket.
0: PSL 2026 के फाइनल घमासान का अब इंतजार कीजिए, जो कि होगा कल पेशावर जलमी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान दोपहर 3 बजे।
1: Pakistan cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: ये है Like a Gold.
3: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
4: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
3: Call today on 01923 883 100
4: or go to skylordcruiseandholidays.com.
3: Book with confidence.
4: We're atoll protected.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: हेल्लारो अने उम्ब्रो जेवी क्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लेने आया छे एक इमोशनल कॉमेडी।
7: तमार तो जिंदगी छे के फिल्म नी वार्ता।
6: एक यू हार्ट जी कई फील करतु नतु, बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज।
8: तमारो हृदय धबकारो चुकी जाय।
6: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आरजव देसाई इन सिनेमास नियर यू।
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.40% on non-withdrawable fixed deposits. Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
12: London Entertainment di sab ton vaddi raat aa rahi hai. Four Pillars Entertainments Limited presents ABPD Awards UK 2026. Live performances by Naveen Kundra, Manjeet Bobby, Nikki Sethi, te hor zabardast artists. 9th May, sham 6 baje, The Center Banqueting Suite, South Hall. For tickets call Manjeet Bhamra at 7956-300-367. ABPD Awards UK 2026. Exclusive radio partner Laika Radio Network.
13: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help two children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
14: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
1: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Bada hi pyara gana Mukesh sahab ki awaaz mein record kiya gaya, Johar Mehmood in Goa. 1965 mein film aayi thi aur Simi Garewal ke ird gird ye gana film aaya tha. Agla gana sunayenge Lata ji aur Kishore da ki awaaz mein, lekin usse pehle
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: तो इस दरमियान लाइका रेडियो नेटवर्क होगा कांचा बाजार में इस सैटरडे 11 बजे से, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हॉलिडे वीकेंड विद लाइव टेस्टिंग सीजन ऑफ दिशा बासमती राइस बिरयानी, फ्लेवर्ड राइस क्वालिटी के साथ, कोई समझौता नहीं। और यहाँ पर आपकी मुलाकात होगी हमारे स्टार डोनी ब्रास्को और अश्विनी एंड रूमी जी से। ज्वाइन कीजिए काचा बाजार, बैक्टन लंदन, पोस्ट कोड है E66LA। फ्री कार पार्किंग अवेलेबल है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं।
4: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: लता जी और किशोर दा की आवाज में हरे कृष्णा हरे रामा फिल्म का, ये हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का एक गाना। और इसके बाद नेक्स्ट सॉन्ग के बाद हम बताएंगे आपको आज के गोल्डन राग का वो गोल्डन वर्ड। सुनते रहे
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, मोर फ्लेवर्स मोर कन्वीनियंस मोर यम, ग्रैब योर कोका बोल टुडे।
0: द किंग्स ऑफ मेलोडीज कुमार सानू रिटर्न टू द यूके ऑफ वन नाइट, एक राइट के लिए आ रहे हैं और सुपरस्टार सिंगर से मिलने के लिए आपको रॉयल एल्बर्ट हॉल जाना पड़ेगा। हॉलीडे का मौका है मंडे 25 में और टिकट के लिए आप वेन्यू पर टिकट मास्टर या एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क के साथ भी संपर्क कर सकते हैं।
2: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Leica Gold.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price
3: at all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
5: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344. 24-hour line.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Satguru Nanak. Sade 10th Guru Govind Singh Ji Maharaj da pavitr janam sthan Takht Shri Harminder Ji Patna Sahib de live darshan dekho. Sirf Zee Punjabi Sky 769 te Virgin Media 811 te. Roz savere 3 vaje to 8 vaje tak. Sirf Zee Punjabi te hi.
9: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
10: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
9: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर।
11: एक बढ़िया कड़क गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो आए हाय मजा आ जाए।
12: अरे समझो हो गया, रॉयल चाय है ना, अब भी बन जाएगी। सिर्फ पैकेट खोलो और गर्म पानी में घोल लो, चाय तैयार, वो भी रॉयल टेस्ट के साथ। रॉयल चाय, झटपट, कहीं भी कभी भी।
13: Kay Furniture's stock clearance sale is now on. Enjoy massive discounts in store on Italian beds, bedroom and dining furniture, all available for immediate delivery. Buy a 3- and 2-seater recliner sofa for £999 and get a dining table and 4 chairs absolutely free. Hurry while stocks last. Kay Furniture, stores at Cricklewood, Harrow and Slough. Or visit kayfurniture.co.uk.
14: Kashmira meri ho jaye. चाय एक दिन के लिए सही।
15: एक मिनट के लिए मेरे आंखों में देखो।
16: A story full of heart, now on the big screen.
17: ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है।
14: पर कल तुम्हें ये दिन याद नहीं रहेगा।
16: आमिर खान presents एक दिन is now showing in cinemas. Book your tickets and watch it today.
18: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
19: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 0208-767-7627
2: Leica Radio Network proud hospitality partner Ragasan
20: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ
0: भाई इससे पहले कि हम आपको अगला गाना सुनवाएं और उसके साथ साथ आपकी दिमाग की बत्ती जलवाएं लेकिन उससे पहले हम आपको सीधे लिए चलते हैं कांचा बाजार जहां पर हमारे स्टार अश्वनी और रूमी भी मौजूद हैं साथ में है डोनी ब्रेस्को चलिए सीधे जुड़ते हैं कि भाई क्या है वहां का माहौल अश्वनी जी कैसी हैं आप
21: बहुत बढ़िया अनुराग आई विश आप ही यहाँ पे होते क्योंकि जिस तरह की यम्मी डिलीशियस बिरयानी हमने यहाँ पे खाई है दिशा बासमती प्रीमियम राइस जो है और यहाँ पे इस स्टॉल पे इतनी भीड़ है आई डोंट नो अगर आपको आवाज आ रही है कि नहीं मतलब एक्चुअली इन लोगों का तांता लगा हुआ है बिकॉज इनके पास भी स्कीम चल रही है 10 किलो राइस फॉर 11.99
0: क्या बात है
21: जो हुजूम कहते हैं ना वैसे इतनी ज्यादा भीड़ है पीपल आर रियली लविंग द बिरयानी जो इन्होंने बना के लाई है इस राइस की बहुत ही अच्छी हम सबने भी खाई है राधर अपनी पूरी टीम ने एंजॉय भी किया है तो हम यही कहना चाहेंगे कि 3 दिन तक इनके पास भी ये स्कीम है जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं कच्चा बाजार फैक्ट्री में आइएगा जरूर देशा बासमती राइस स्टॉल पे और जरूर इस जो ऑफर का है वो ऑफर का लुत्फ तो बिरयानी का उठाएंगे और ऑफर का उनके लिए बहुत अच्छा यूज होगा बिकॉज पॉकेट क्रेंजी है अपनी ऑफर
0: बिल्कुल और ये कहाँ पर हो रहा है थोड़ा सा लोकेशन बताएंगे आप मुझे
21: ये बैक्टन में कच्चा बाजार है वहाँ पे फूड बाजार लगा हुआ है तो अलग अलग स्टॉल्स भी लगे हैं दिस इज स्पेशली दिशा बासमती प्रीमियम राइस का स्टॉल है
0: अच्छा आप अभी किस दिशा में जा रही हैं आप अपने घर की तरफ जा रही हैं अभी वक्त बिताएंगी
21: हाँ, अभी अभी आफ्टर दिस मैं अपने घर की दिशा में जाऊंगी दिशा
0: तो आप अपनी अपने घर की दिशा से पहले इस दिशा में आए और दिशा बासमती राइस यानी कि बिरयानी की खुशबू आ रही है यहाँ पर भी लेकर आए लेकिन हम आपसे आप ही के माध्यम से हम ये सबसे कहेंगे कि जरूर पहुंचे ऐसा मौका बार बार नहीं होता है इस खुशबू के बीच में आप लोग को होना चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी जी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू तो ये थी अश्वनी जी कांचा बाजार में आप भी पहुंचिए बैक्टन में पोस्ट कोड है E66LA फ्री पार्किंग अवेलेबल
22: Star Track of the Hour sponsored by Star Tours, Coach, Eurostar, या Flight. आप चूज करो अपना स्टाइल बाकी सब Star Tours Experience संभाल लेता है Visit StarTours.co.uk.

0: आशा दायो किशोर दा की आवाज में सीता और गीता फिल्म का गाना। खुद हेमा जी कहती हैं कि उनके करियर की ये तमाम सुपरहिट और बेहतरीन फिल्मों में शुमार सीता और गीता। अगले गाने के बाद हम आपको बताएंगे, दिमाग की बत्ती जलवाएंगे और आज का गोल्डन वर्ड बताएंगे, सुनते रहें।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128.75 पाकिस्तानी रुपीस 378.4, श्रीलंकन रुपीस 433.91, अफगान अफगानी 87.49 एंड 1 US डॉलर 1.35.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £109.35 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. London's biggest classics all day. Leica Gold.

0: लता जी और महेंद्र कपूर साहब की आवाज, वो कौन थी फिल्म का गाना सुन रहे थे और इस फिल्म का संगीत दिया था मदन मोहन साहब ने। फिल्म में नजर आई थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड, मुझे तो बहुत ही प्यारी लगती हैं साधना जी और भारत कुमार मनोज कुमार साहब, और ये गाना फिल्म आ गया था हेलन जी के ऊपर। और इसी के साथ आपको दिमाग की बत्ती जलाने का हम काम देने जा रहे हैं, आप बताएं। और हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड है वही जो अब नज़र नहीं आता, बस अब उसे हम फ़ोन पे ही देख पाते हैं, अब ना वो फोटो फ्रेम रह गए हैं और ना ही वो तस्वीरें खिंचाने का जोश रह गया है। जी हाँ, आज का गोल्डन वर्ड है तस्वीर। याद रखें, तस्वीर से जुड़े कोई भी गाने आप हम तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिएगा, अच्छे गाने हो, रोमांटिक थोड़े से, सुनते रहें गोल्डन राग।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: Indian Premier League ke ek aur badhiya kadak muqable ke liye ho jaiye taiyar, jo ki hoga dopahar 3 baje Chennai Super Kings aur Mumbai Indians ke beech 44th match of IPL.
2: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
0: अगला गाना सुना रहे हैं आपको रफी साहब और मुकेश साहब की, यानी कि दो दिग्गजों का एक साथ मिलन।
3: ये है Like a Gold। पंकज सोडा प्रेजेंट करे छे हास्यती भरपूर सुपर हिट नाटक बा अमारा बाजीगर, कॉमेडी क्वीन लेडी अमिताभ प्रतिमाटी अने जीतू कोटक साथे यूके ना अलग अलग शहरों मा लाइव राइसलिप अल्बर्टन लूटन पॉटर्स बार फिंचली साउथ लंदन अने ईस्ट लंदन हास्य मनोरंजन अने फैमिली साथे एंजॉय करवानु परफेक्ट नाटक। आज ज कॉल करो पी आर पटेल ऑन 07957555226।
4: One inch is okay, Karibuni.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com. Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
6: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
5: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
6: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
5: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
8: गारंटेड।
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर

0: देंगे साउथ हॉल ट्रेवल
1: फोन 0208574 8410
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: देखिए बैठे बैठे हमने आपको कश्मीर के दर्शन करा दिए, नहीं कम से कम मन को तो आपको वहां पर बिना वीजा टिकट के पहुंचाई दिया। बेमिसाल फिल्म का गाना गा रहे थे, सुन रहे थे आप भी किशोर दा और सुरेश भाटकर जी की आवाज, साथ में लता जी का तड़का उनके सुरों के जादू का। और ये गाना हम तक पहुंचाया था निर्मला जी ने और अशोक जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का ही पहला गाना हमने आपको सुनाया परदेश फिल्म का, सोनू निगम जी की आवाज़ में। इस गाने में भी तस्वीर लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है, अगर आपने गौर फरमाया हो। दिल ऐसा बेपीर है, ये एक तस्वीर है। और ये गाना परदेश फिल्म का था, इसलिए परदेश फिल्म का दूसरा गाना ज़रा तस्वीर से निकल कर सामने आ, वो हम प्ले नहीं कर पाएंगे भाई, एक फिल्म के दो गाने तो नहीं बनते हैं। हंसा जी आपको दिमाग की बत्ती फिर से जलानी पड़ेगी। और साथ में किसी और ने भी, हरमिंदर जी ने भी इस गाने की के लिए बोला था, लेकिन आपको फिर से दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी। आज का गोल्डन वर्ड है तस्वीर, याद रखें और सुनते रहें गोल्डन राखी सुरों से सजी वीकेंड वाली पाठशाला।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128 रुपीस आपको मिल सकते हैं। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर करते रहें।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
1: Pakistan cricket score updates brought to you by Remitly. Send money to Pakistan with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो PSL का ताज़ा अपडेट आपके लिए भाई, कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा महामुकाबले के लिए, फाइनल के लिए। और ये होने वाला है दरमियां पेशावर जलमी और हैदराबाद किंग्समैन के बीच।
1: Pakistan cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: ये है Leica Gold.
2: Lights, camera, culture.
3: Get ready for the UK Asian Film Festival 2026.
2: Bringing powerful stories and bold voices to the big screen.
3: Join us from Friday the 1st to Sunday the 10th of May across London, Leicester, Coventry and Cumbernauld.
2: Experience unforgettable films, inspiring talent and vibrant culture.
3: Don't miss it and book now at ukaff.com.
2: UK Asian Film Festival 2026, where stories come alive.
3: Radio partners like a radio network.
4: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
2: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
4: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
2: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
4: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination. Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
5: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
4: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
5: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
4: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
5: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
4: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
5: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
6: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
7: No more worries for me or you.
4: Southall Travel. At all protected.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
10: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
11: साढ़े दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तखत श्री हरमिंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही
12: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद
13: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट मंचूरियन मसाला पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट
12: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
14: K Furniture stock clearance sale is now on. Enjoy massive discounts in store on sofas, Italian beds, bedroom and dining furniture, all available for immediate delivery. Buy an orthopedic double divan bed for £399 and get the headboard and drawers absolutely free. Hurry, deals are on while stocks last. K Furniture stores at Cricklewood, Harrow and Slough or visit kfurniture.co.uk.
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com T&Cs apply
16: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
1: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
18: जिस दिन

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: सलील चौधरी साहब के संगीत से सजी इस फिल्म के सारे खूबसूरत अंग में हमने आपको सुनाया माया फिल्म का ये गाना लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में। जब भी इस फिल्म का ये गाना सुना बड़ा मज़ा आता है और ये गाना हम तक पहुंचाया है स्वीटी कालरा जी, करसन पिंडोरिया जी, गिरीश पंजवानी, भारती जी, कीर्ति जी, सलमा जी फ्रॉम कैंट से, हरविंदर जी सही टाइम पर दिमाग की बत्ती जली और हंसा मिस्त्री जी की भी आपने भी बड़ा ही प्यारा गाना चुना है। अगला गाना किशोरदा की आवाज में सुनते रहे, लेकिन उससे पहले
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: फ्रैंकी गोज टू बॉलीवुड, ये स्टेज म्यूजिकल फ्रैंकी गोज टू बॉलीवुड स्टोरिंग द यूके लाइका रेडियो नेटवर्क है एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर। अपने टिकट आपको मिल सकते हैं रिफ्को थिएटर .com में। इसके अलावा लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कंफर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन। Details at laikaradio.com.
0: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: किशोरदा की आवाज में महान फिल्म का ये खूबसूरत गाना हम तक पहुंचाया था हितेश कुमार जी, पंकज, सुमित चौरसिया और कंचन दुबे जी ने. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही, चारों का ही, माफ कीजिएगा, बहुत बहुत प्यारा गाना हम तक पहुंचाने के लिए. अगला गाना आ रहा है आशाताई रफी साहब की आवाज में, प्यारी सी फिल्म, 60s का ये दौर, लेकिन खूबसूरत गाना आज भी उतना ही.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.
3: Like a gold. ये है Like a Gold. Like a Gold. Like a Extra Podcast Update.
1: Like a Podcast, यानी कि Like a Extra Podcast का आपको अपडेट दे देते हैं. एपिसोड 14, टाइटल है द UKAFF राउंड टेबल, होस्टेड बाई हमारी स्टार रूबी रजा जी. गेस्ट हैं द टीम ऑफ यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल फ्रॉम मे 1st टू मे 10th.
3: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर. गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव.
4: ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम. फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम.
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
5: विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम.
6: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
7: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
6: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
7: And you didn't pay those massive roaming charges?
6: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
8: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
9: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रही छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी
10: जेज एंटरटेनमेंट लेने आवी रहा छे सखना रे जो हसबंड जी
9: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी. शनिवार 27 जून ना 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे. टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655. सखना रे जो हसबंड जी.
11: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
12: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए.
13: कल सिवाय इस पिंजरे में होगा जिंदा या मुर्दा.
14: वॉच राजा शिवाजी स्टारिंग रितेश देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन एंड विद्या बालन. Releasing in cinemas on 1st May.
15: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
16: Save even more this weekend with bank holiday offers in the Furniture Village sale. We've added new offers on sofas, dining, beds and bedroom furniture. And that's on top of sale prices. Bank holiday offers end Monday at Furniture Village, an award-winning family business.
17: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
18: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
17: Call today on 01923-883-100
18: or go to skylordcruiseandholidays.com.
17: Book with confidence.
18: We're Atoll protected.
19: Location, location, location.
20: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
19: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
20: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
19: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
20: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
19: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
20: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
19: High appreciation.
20: In Dubai.
21: Leica Radio Network. Proud hospitality partner. Ragasan. On this week's Leica Extra Podcast, it's a UK Asian Film Festival roundtable special hosted by Ruby Raza.
22: This is a festival that has been taking place for 28 years now.
23: We are having a big pop in getting people back into cinema.
24: There is a completely different game happening behind the scenes.
22: You've had stars like Zenith Amana attend.
21: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. This song is brought to you by Kumar Shanu, live at Royal Albert Hall with exclusive radio partner Leica Radio. One date only, May 25th.

0: करोगे?
1: मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, क्या करोगे तुम? काला समंदर फिल्म का गाना 1962 में ये फिल्म आई थी और इस खूबसूरत गाने को हम तक पहुंचाया है फरीदा गुलाम अली जी, बीना पारिक जी और संतोष जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128.75 बांग्लादेशी टका, 166.62 पाकिस्तानी रुपीस, 378 श्रीलंकन रुपीस, 433.51 अफगानी 87.51 एंड 1 US डॉलर 1.35.
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £109.35 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. This is Leica Gold, non-stop classics.
4: क्या कहने माशाल्लाह।

0: जी चाहता है फिल्म का ये गाना, जी चाहता है कि खींच लूँ तस्वीर आपकी। बड़े ही प्यारे बोल गाने के, और कल्याण जी आनंद जी हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक जो है उन्हीं का ही सजाया हुआ इस फिल्म के लिए संगीत। फिल्म में नजर आए थे जॉय मुखर्जी और राजश्री जी, बड़ी ही खूबसूरत जोड़ी थी ये भी। बड़ी बड़ी आंखें राजश्री जी की और अलग सा चेहरा, बड़ा नटखट सा चेहरा, जब भी स्क्रीन पर आती थी तो तहलका मचा देती है। हालांकि इमोशनल सीन्स भी बहुत ही बेहतरीन तरह से इन्होंने निभाए अपनी फिल्मों में। और ये गाना हम तक पहुंचाया था उल्ला जी, प्रफुल्ल पटेल और ममता सुलंकेश जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: दिस इज लाइक अ गोल्ड। India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: लगभग अब से 9 मिनट बाद एक महामुकाबला शुरू होने जा रहा है, IPL का 44th मैच, जो कि चेन्नई में इस वक्त खेला जाएगा 3 बजे मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान।
2: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA।
3: ये है लाइका गोल्ड।
4: Save even more this weekend with bank holiday offers in the Furniture Village sale. We've added new offers on sofas, dining, beds and bedroom furniture. And that's on top of sale prices. Bank holiday offers end Monday at Furniture Village, an award-winning family business.

0: जैसे
1: सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर
2: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियाँ लाए।
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर।
3: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
4: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
3: ये तो बताओ, कोई पता चला?
5: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
6: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
3: शीघ्र शीघ्र।
5: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
7: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड। हेल्लारो अने उम्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्सना नेशनल एवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लईने आव्या छे एक इमोशनल कॉमेडी।
8: तमारो तो जिंदगी छे के फिल्म नी वार्ता।
7: एक यू हार्ट जी कई फील करतु नहोतु।
9: मारी वार्ता अधूरी छे भाई।
7: बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज्ड।
10: तमारो हृदय धबकारो चूकी जाय छे।
7: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आर्जव देसाई।
11: लोकेशन अहींना करेला अहींज भोगवाना छे।
7: इन सिनेमास नहीं आयु।

0: बासमती राइस।
1: दिशा बासमती राइस अवेलेबल एट कच्चा बाजार व्हाइट चैपल एंड बेक्टन ब्रांच।
0: दिशा बासमती राइस
2: फ्रॉम सीनिक ब्रेक्स इन स्कॉटलैंड द लेक डिस्ट्रिक्ट।

0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: तलत महमूद साहब की खूबसूरत आवाज में बरादरी फिल्म का एक गाना 1955 में फिल्म आई थी, विंटेज गोल्ड वाला गाना हमने आपको सुनाया। और ये गाना हमारे पास आज की थीम को ध्यान में रखकर पहुंचाया गया था बहुत सारे लोगों की तरफ से। संतोष जी, चंदू शाह जी, दिनेश पोपट जी, महरूख, रंजना कुकाड़िया, संध्या भावसर, और यकीनन मैं किसी न किसी का नाम ज़रूर भूल रहा हूँ। अगर उनका नाम मैं नहीं ले पाया तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ व्हाट्सएप पर अपनी हाजिरी लगाएं। और इसी के साथ अभी अभी सुनते जाएं अगले घंटे के गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस। ऑप्शन ए है चढ़े चंदा तो तुम चले आना, फिल्म का नाम है अपलम चपलम। ऑप्शन बी हम सफ़र मेरे हम सफ़र, फिल्म का नाम पूर्णिमा। और ऑप्शन सी है रुख से ज़रा नकाब हटाओ, फिल्म का नाम है मेरे हुजूर। अपने अपने वोट कास्ट करना शुरू कर दें। एक बार फिर से हम दोहराएंगे अगले घंटे, सुनते रहें गोल्डन राग।
2: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
3: From the Sky News Centre at 3, Sir Keir Starmer stopped short of saying pro-Palestine marches should be banned, but wants tougher action on certain chants heard at them. Tory leader Kemi Badenoch thinks the Prime Minister doesn't know what to do about anti-Semitism. The Pentagon has announced 5,000 American troops will be withdrawn from Germany. It comes after its Chancellor Friedrich Merz said the US was being humiliated by Iran in the ongoing peace talks to end the war. NATO says the adjustment underscores the need for Europe to continue to invest more in defence. Military analyst Sean Bell says we shouldn't be too concerned.
4: For us as a small nation, that sounds like a big number. But actually, if you look at the number of people deployed in Germany from America, it's 36,000. So we are talking about less than 15%. In the first term, President Trump did threaten to reduce the footprint by 10,000 soldiers in Germany, but that never came to pass.
3: A man's appeared in court charged with 5 offences after a car bomb attack outside a police station on the outskirts of Belfast. Kieran Smith is accused of hijacking a vehicle which then exploded outside Dunmurry police station last weekend. No one was injured. Tonight's Peter Kay Show in Birmingham will go ahead as planned after a suspected bomb hoax last night. The comedian was ushered off stage and the arena evacuated. To sport, Ipswich are heading back to the Premier League after winning 3-0 against QPR on the final day of the regular championship season. It's their third promotion in 4 seasons under manager Kieran McKenna. He says this one feels the most significant.
5: It's probably been the hardest one, if I'm honest. So, yeah, it means an awful lot. I'm so grateful to my family and for the staff, the way they supported me, and it's brilliant.
3: Hull beat Norwich 2-1 to secure the final place in the playoffs. Wrexham missed out after a 2-2 draw with Middlesbrough. And Netflix is releasing a movie in cinemas for the first time. Greta Gerwig's Narnia, the magician's nephew, will be on the big screen for 7 weeks. That's the latest. I'm Victoria Lawrence.
2: Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: Weather report, ek baar fir se 22 degrees Celsius is waqt ka current temperature, Greater London ka light rain showers and gentle breeze, sunset 8:25 PM.
2: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Flight updates brought to you by Brightsun Travel. Make travel fun. Book with Brightsun. Leica Gold.
1: Virgin Atlantic की फ्लाइट नंबर VS301 from जो दिल्ली से आ रही है, दिल्ली से, और जिसका स्केड्यूल टाइम पहले था 4:15 PM, लेकिन अब थोड़ा सा अर्ली 3:57 PM पर ये फ्लाइट पहुंचेगी टर्मिनल 3 की तरफ, लेकिन फिर भी टाइमिंग्स को लेकर क्रॉस चेक जरूर करें।
2: सेलिब्रेटिंग ब्राइटसन ट्रेवल्स 40th एनिवर्सरी, ब्राइटसन आर गिविंग £40 ऑफ पर एडल्ट्स ऑन हैंड पिक्ड हॉलीडेज प्लस अपग्रेड्स, किड स्टे और ईट फ्री ऑफर्स, फ्री टूर्स एंड ट्रांसफर्स एंड मोर। विजिट द वेबसाइट फॉर डिटेल्स एट brightsun.co.uk/40.
1: स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का गोल्डन राग संग शुरू से सजी वीकेंड वाली इस पाठशाला में। मैं हूं आपके साथ अनुराग और एक बार फिर से बैक टू बैक गानों के साथ होगी इस घंटे की भी शुरुआत। और इसके बाद हम बताएंगे आपको आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस जो कि हम पहले भी बता चुके हैं।
2: लाइक अ गोल्ड, लेट्स रिटर्न टू द बिगेस्ट हिट्स बैक टू बैक, स्पॉन्सर्ड बाय travelhubworld.com। फॉर द बेस्ट सर्विस एंड अनबीटेबल प्राइसेस विजिट travelhubworld.com। travelhubworld.com,
6: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता।
7: Travel Hub
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: लाइक अ ऑन राग विद गोल्डन राग।

0: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, लता जी और मनमोहन सिंह साहब की आवाज में वारिस फिल्म का ये प्यारा सा गाना हमने आपको सुनाया। और अब वक्त आ चुका है आपको आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस को भी बताने का। तो आप लोग तैयार हैं? एक बार फिर से हम रिपीट करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो हम रिपीट कर ही चुके हैं। तो आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस, ऑप्शन ए है चढ़े चंदा तो तुम चले आना, अपलम चपलम फिल्म का ही गाना है। ऑप्शन बी है हम सफर मेरे हम सफर, पूर्णिमा फिल्म का ही गाना है। और ऑप्शन सी है रुख से जरा नकाब, मेरे हुजूर फिल्म का ये सॉन्ग। अब आपके पास तीन ऑप्शंस हैं ए बी एंड सी, जिसे भी आप पसंद करते हो, जो आपके दिल की आवाज़ को सुनता हो वो गाना, वो आप हम तक पहुंचाएं। अपने ऑप्शंस को वोट की तरह कास्ट करें और जिस ऑप्शन को लेकर सबसे ज़्यादा वोट्स हमें रिसीव होंगे वो गाना हमेशा की तरह आज भी बनेगा आज का गोल्डन राग। तो वोटिंग लाइन से ओपन, जब तक हम होगा लगाते रहिए चौका।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128 रुपीस आपको अपने पैसे को भेजने के लिए वाया ब्रांच बैंक और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी आप अपने पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like a gold.
1: Pakistan cricket score updates. Brought to you by Remitly. Send money to Pakistan with Remitly. Great rates and low fees. Remitly. Proud to be the official partner of England cricket.
0: तो पाकिस्तान का कल PSL का कल मुकाबला होने वाला है, बड़ा ही अहम, जो कि फाइनल है महासंग्राम पेशावर जलमी और हैदराबाद किंग्समैन के बीच दोपहर 3 बजे।
1: पाकिस्तान क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे। Remitly UK Limited इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Weddings, celebrations, corporate events, Ragasan sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar incredible themes design karne tak, world class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se zyada ka experience har event ko khas banaye. Foran ka phone milaye 0208839080 or visit ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागा सन।
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
5: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 0203736333 now. Apta bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com. Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
7: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
6: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
7: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
6: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
8: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स।
9: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
8: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स।
7: Looking to buy gold, silver or platinum bars in the UK? Visit buybullion24.co.uk for competitive prices, trusted service and secure online buying. For more details, WhatsApp on 0737522418. Start investing with confidence today at buybullion24.co.uk.
10: ICICI Bank Money to India, which is trusted by millions across 16 countries, is now in the UK.
11: Wow! So, sending money to India is instant?
10: Yes, from any bank in the UK to any bank in India. Real-time exchange rates, round-the-clock support. Not only this, we also get a preferential rate and zero fees on our first 5 transfers.
12: Download ICICI Bank's Money to India UK app today from the Play Store or App Store.
13: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA. Terms and conditions apply.
14: Location, location, location.
15: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
16: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
17: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
16: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
17: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
16: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
17: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
16: high appreciation
17: in Dubai.
18: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
1: Like a Gold, London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: क्या बात है भाई, मुकेश साहब की आवाज में इस गाने को कभी भी सुनिए, बड़ा मजा आता है। और हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक कल्याण जी आनंद जी ने इस फिल्म का दिया था संगीत। फिल्म का नाम हिमालय की गोद में। और एक बार फिर से आपको रिपीट करते हुए आज के गोल्डन आके तीनों ऑप्शंस, ऑप्शन ए है चढ़े चंदा तो तुम चले आना, बड़ा ही प्यारा गाना है अपलम चपलम फिल्म का। और ऑप्शन बी है हम सफर मेरे हम सफर, फिल्म का नाम है पूर्णिमा। और ऑप्शन सी है रुख से जरा नकाब, फिल्म का नाम है मेरे हुजूर। अपने अपने वोट कास्ट करते रहें भाई, जब तक है मौका लगाते रहें चौका। अभी बहुत सारे गाने आने बाकी हैं और आपके दिल के धराने हमें आपको सुनाने बाकी हैं, तो सुनते रहें। अगला गाना हमारी बर्थडे गर्ल अंजलि जी के लिए, सुनते रहें। और अपना जन्मदिन स्पेशल लाइका परिवार की तरफ से आप सबको, आपको अंजलि जी मुबारक हो, और ये गाना आपके लिए।
1: ये है Like a Gold, feel good track, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
3: Bola jaye phoolon ka shabab, usme phir

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Lata ji, Kishore Da ki awaaz mein Prem Pujari film ka ye gaana hamari birthday girl ke liye, aur saath mein aapko bata denge bhai, options aapko humne teen diye hue hain. आप उनमें से एक किसी एक को चुनिए और हम तक उसे वोट की तरह कास्ट करिए. फिलहाल हम आपको ले जा रहे हैं 70s से डायरेक्ट 50s की तरफ, यानी कि विंटेज गोल्ड वाला सैंडी जी वाला गाना आपको सुनाने जा रहे हैं गीता दत्त की आवाज़ में. लेकिन याद दिला दें, वोटिंग लाइन से भी ओपन है, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें.
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: गीत आजाद की आवाज में विंटेज वाला ये गाना आर पार फिल्म से था और अगले गाने के बाद बंद हो जाएंगी वोटिंग लाइंस, तो अपनी उंगलियों को हरकत करने पे एक बार फिर से मजबूर कीजिए और अपने वोट को कास्ट कीजिए।
2: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Leica Gold
4: Travel Hub World.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call Travel Hub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: Travel Hub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
6: हिल्लारो अने उम्ब्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लेने आव्या छे एक इमोशनल कॉमेडी।
7: अतमार तो जिंदगी छे के फिल्म नी वार्ता।
6: एक यू हार्ट जी कई फील करतु नतु बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज्ड।
8: तमारो हृदय धबकारो चुकी जाय छे।
6: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आर्जव देसाई इन सिनेमास नियर यू।
9: पंकज सोडा प्रेजेंट करे छे हास्य थी भरपूर सुपर हिट नाटक बा अमारा बाजीगर, कॉमेडी क्वीन लेडी अमिता प्रतिमाटी अने जीतू कोटक साथे यूके ना अलग अलग शहरों मा लाइव। राइसलिप, अल्बर्टन, लूटन, पॉटर्स बार, फिंचली, साउथ लंदन अने ईस्ट लंदन। हास्य मनोरंजन अने फैमिली साथे एंजॉय करवानु परफेक्ट नाटक। आज ज कॉल करो पी आर पटेल ऑन 0795755226। 1 inches or 10

0: बासमती राइस।
1: दिशा बासमती राइस अवेलेबल एट कच्चा बाजार व्हाइट चैपल एंड बेक्टन ब्रांच।
0: दिशा बासमती राइस।
2: Two businesses,
3: same town,
2: same service.
3: One appears on page one of Google,
2: the other doesn't.
3: Guess which one gets the customer?
2: The truth is brutal.
3: The first page of Google gets the business.
2: Everyone else gets what's left.
3: So here's the real question.
2: When your customers search for what you sell, do they find you?
3: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
2: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
4: एक मसालेदार चाय के बारे में सोचते ही बस एक ही नाम याद आए, यूनिक मसाला चाय। इस सर्दी मजा लीजिए यूनिक चाय के अलग अलग मसाले फ्लेवर्स का। सिर्फ गर्म पानी लो और यूनिक चाय के साथ घोल लो। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सबकी फेवरेट यूनिक मसाला चाय तैयार।
5: Some of those delicious noodles.
6: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup, and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups, and bowls now available everywhere in the UK.
7: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter, and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
8: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
10: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
11: Bank holiday offers end this Monday in the Furniture Village sale. Don't miss your last chance to save.
12: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
13: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS Swaminarayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.

0: लता जी की आवाज में इम्तिहान फिल्म का गाना। वैसे अब इम्तिहान का रिजल्ट आने का भी मौका आ गया है, क्योंकि चुना जा चुका है आज का गोल्डन राग और बंद हो चुकी है आज के लिए आज की वोटिंग लाइन। सुनते रहे, देखते हैं क्या सरप्राइज दिया है आपने एक दूसरे को।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128.74, पाकिस्तानी रुपीस में 378.16, श्रीलंकन रुपीस 433.44, अफगान अफगानी 87.49 एंड 1 US डॉलर
2: 1.35. Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £109.35 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM। ये है
5: लाइका गोल्ड।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली। सेंड मनी फास्ट टू इंडिया विद रेमिटली, ग्रेट रेट्स एंड लो फीस। रेमिटली प्राउड टू बी द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट।
0: चेन्नई में खेला जा रहा 44th मैच ऑफ IPL, मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग करते हुए 9 ओवरों में 77 रन यानी कि 77 रन और 2 विकेट्स का नुकसान।
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
6: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

वाह भाई वाह, रफी साहब की आवाज में इस गाने को कौन भुला सकता है। शंकर जयकिशन साहब का इस फिल्म के लिए संगीत, राजकुमार माला सिन्हा और जितेंद्र जंपिंग जैक इस फिल्म में नजर आए थे और इस गाने को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं मिसेस पाकी चैंग, मिसेस इकबाल बेगम और अंजना, राजेंद्र सिंह, रेणु जी, उल्लास जी, हंसा मिस्त्री, किरिट रेडिंग से अयूब चौहान जी, आभा जी, सीमा जी, राज मल्होत्रा, शेखर, रेणु वशिष्ठ, किशोर, पंकज, सालिम अख्तर, सुमन दुबे और गरिमा तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को वोट देकर आज का गोल्डन राग बनाने के लिए। नेक्स्ट आ रही है सरिता जी, मेरा हो रहा है वक्त आपसे अलविदा कहने का। कल होगी इसी वक्त इसी शो में मुलाकात, लेकिन महफिल होगी संडे वाली। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। टेक केयर, बाय बाय। ये है लाइक।

0: दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है,
1: पर कल तुम्हें ये दिन याद नहीं रहेगा।
2: Aamir Khan presents Ek Din is now showing in cinemas. Book your tickets and watch it today.
3: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
5: 0208574-8410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: Sarita Sabharwal with Golden Memories. This is Like a Gold. Like a Gold. London ka number one Asian retro music station.

0: special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574-8. Flight updates brought to you by Bright Sun Travel. Make travel fun. Book with Bright Sun. Like a gold.
1: राइट, आइए आपको बता दें कि फ्लाइट्स का क्या हाल चल रहा है। वर्जिन एटलांटिक की फ्लाइट VS355 कमिंग फ्रॉम मुंबई इज स्केड्यूल फॉर 4:45, नाउ अराइविंग एट 4:59 एट टर्मिनल 3।
0: Celebrating Bright Sun Travel's 40th anniversary. Bright Sun are giving £40 off per adult on hand-picked holidays, plus upgrades, kids stay or eat free offers, free tours and transfers and more. Visit the website for details at brightsun.co.uk/40. Sarita Samuel.
1: आपके अपने लाइका गोल पर इस वक्त आपसे मुखातिब है आप ही की प्रेजेंटर सरिता सबरवाल। मुझसे पहले इस हॉट सीट पर थे अनुराग और दूसरी तरफ थी अनिका, और आज नीरज की जगह है डॉनी ब्रास्को और यहाँ है सरिता। आइए सबसे पहले सुनते हैं बैक टू बैक दो गाने।
0: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
1: TravelHub.
2: At all protected.
0: Leica. Sarita Sabharwal.

0: Good afternoon. आपकी अपनी प्रेजेंटर सरिता सबरवाल है आपके साथ। 4:13 हुए हैं और दो गीत आपने ऑलरेडी सुन लिए और दोनों गीत आपको पसंद आए होंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया मैंने हेलो ब्रदर के एक गीत के साथ और आपसे जानना चाहूँगी क्या आपने वो आवाज़ें पहचानी थी। चलिए एक आवाज़ बता देती हूँ, जसविंदर नरूला की थी। मेल वॉइस किसकी थी अगर आपको पता चल गया हो तो मुझे ज़रूर लिखकर भेजिएगा। एंड दूसरा गीत मैंने चुना हिम्मत वाला फिल्म से, 1983 की फिल्म थी, किशोर दा एंड लता मंगेशकर की आवाज़ें, कि सजना पे दिल आ गया। और दोनों गीत मुझे पसंद आए, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आए होंगे, आपकी पसंद की कसौटी पर खरे उतरे होंगे ये दोनों गीत। अब बता दें मुझे कि कैसा गुजरा पूरा हफ्ता। पूरा हफ्ता हमारी मुलाकात नहीं हुई, आज हमारी मुलाकात का समय तय था और मैं सरिता आपकी सेवा में हाजिर हो चुकी हूँ। आप हाजिरी लगा रहे हैं या नहीं, आप भी मुझे बता दें कि कहाँ बैठे ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस वक्त, किस इलाके में हैं, खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं या शाम की चाय पी रहे हैं। तो लेट लंच भी करते हैं बहुत से लोग, लेकिन हाँ अगर शाम की चाय पी रहे हैं तो क्या क्या बना है आज। मौसम इतना खूबसूरत है और ऐसे मौसम में तो दिल चाहता है कि कोई चटपटी सी चीज़ भी हो तो मज़ा आ जाए। यस, गोलगप्पे खाने को जी जा रहा है मेरा भी। खैर एनीवे, बहुत सी बातें होंगी पूरे प्रोग्राम में, सरिता बातें करती रहेगी आपके साथ, लेकिन साथ साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देनी है। एंड जिन मेरे साथियों ने ऑलरेडी मुझे मैसेजेस भेज दिए हैं, तहे दिल से उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। क्या आपको पता चल गया कि आज के गीतों में कौन सा शब्द है जो बार बार सुनने को मिला? अगर हाँ तो व्हाट्सएप मैसेज मुझे भेज सकते हैं, आपके पास नंबर आपके दिल की डायरी पर लिखा हुआ है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: बे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो काम बड़ा आसान है। यू कैन गो टू द ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। एंड आज आपको मिल सकते हैं 127 rupees and 95 paisas अगेंस्ट 1 British sterling pound, बट इट डिपेंड्स कि कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold.
1: Pakistan cricket score updates brought to you by Remitly. Send money to Pakistan with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: राइट भी, आज कोई मैच नहीं है, कल मैच हुआ था हैदराबाद किंग्समैन एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच, एंड हैदराबाद 1/2 runs, और कल मैच होने वाला है पिशावर जलमी एंड हैदराबाद किंग्समैन के बीच में। कल शाम दोपहर 3 बजे मैच शुरू होगा, तो हम आपको आंखों देखा हाल बताते रहेंगे।
1: Pakistan cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
3: एक सौ पांच सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रही छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी
4: जेज एंटरटेनमेंट लाइने आवी रहा छे सखना रे जो हसबंड जी
3: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी शनिवार 27 जून ना 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे। टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655। सखना रे जो हसबंड जी।
5: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
6: No more worries for me or you. સાફો ટ્રાવેલ આટો પ્રોટેક્ટેડ.
7: હિલ્લારો અને ઉમરો જેવી અક્લેમ્ડ ગુજરાતી ફિલ્મ્સના નેશનલ એવોર્ડ વિનિંગ ડિરેક્ટર અભિષેક શાહ ફરી એકવાર લઈને આવ્યા છે એક ઇમોશનલ કોમેડી.
8: તમારે તો જિંદગી છે કે ફિલ્મની વાર્તા.
7: એક એવું હાર્ટ જે કઈ ફીલ કરતું નહોતું.
9: મારી વાર્તા અધૂરી છે ભાઈ.
7: બટ વન બીટ એન્ડ એવરીથિંગ ચેન્જ્ડ.
10: તમારું હૃદય ધબકારો ચૂકી જાય છે.
7: ધબકારો સ્ટારિંગ દેવેન ભોજાની અને આર્જવ દેસાઈ.
11: લોકેશન અહીંના કરેલા અહીં જ ભોગવવાના છે.
7: ઇન સિનેમાઝ નિયર યુ.
12: પેક્ડ ફોર ધ ટ્રીપ. Gifts? Passport?
13: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
12: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
13: Simzy?
12: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
14: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
15: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
1: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
17: जिस

0: भाई वही तो नहीं आप जिसके सपने हर रोज़ वो लेती रही आपको सपनों में देखती रही। इस बात का जवाब देना हो तो ज़रूर दे सकते हैं। फिल्म मैंने ये गीत चुना था फ्रॉम द फिल्म गीत एंड इस फिल्म में काम किया था राजेंद्र कुमार ने और साथ में थी माला सिन्हा। फिल्म का संगीत तैयार किया था कल्याण जी आनंद जी ने। गाने सारे इस फिल्म के बहुत खूबसूरत थे और ख़ास तौर पर ये वाला गाना बहुत पसंद किया गया था। महेंद्र कपूर साहब एंड लता जी ने गाया था। इसके अलावा तेरे नैना क्यों भर आए वो गाना भी बड़ा खूबसूरत था, महेंद्र कपूर साहब का गाया हुआ, बांसुरी बजाए के वो गाना भी बहुत अच्छा था। एंड मेरे मितवा मेरे मित्रे वो गाना तो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। सो मुझे उम्मीद है कि ये गीत आपको पसंद आया। और आप तक ये गाना किसने पहुँचाया?
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Ye hai like a gold, like a gold.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: वेल, वो लोग बहुत लकी होते हैं जिनके सपने पूरे हो जाते हैं। आप भी क्या उन्हीं में से एक हैं? अगर हैं तो इशारा कर दीजिए। संध्या भाव सर, थैंक यू। हरप्रीत इन वैंकूवर, दिव्या इन हैरो, हरीश रूडा जी, जैस्मिन, रेनू वशिष्ठ, अर्जुन जी, मिसेस पाकी चियांग, सभी का थैंक यू।

0: व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्यून. लता मंगेशकर एंड महेंद्र कपूर साहब ने गाया था इस गीत को भी. एंड इस फिल्म में काम किया था जितेंद्र एंड नंदा ने. वेल, मुझे नंदा बहुत पसंद थी. नंदा भी, शर्मिला टैगोर, राखी, ये मेरी फेवरेट हुआ करती थी. और नंदा के यू नो, पहले पुराने वक्त में तो सभी एक्टर्स को सभी लेटर्स लिखते थे अपने ऑटोग्राफ फोटोग्राफ्स के लिए. तो शायद मैंने भी एक दफ़ा नंदा जी को लेटर लिखा था कि मुझे अपनी ऑटोग्राफ फ़ोटो भेजिए, एंड शी डिड सेंड मी. तो कहीं पता नहीं कहाँ गुम होगी होगी, ये तो याद नहीं. पर कभी आपने भी ऐसा किया था? अगर हाँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा. कल्याण जी आनंद जी का था ये भी संगीत. वैसे कल्याण जी आनंद जी इस हफ्ते के हमारे क्या रहे आर्टिस्ट ऑफ द वीक. इनकी धुनें आपने पूरा हफ्ता सुनी है. और आज के प्रोग्राम के इस आवर में ही दो गीत मैंने जो शामिल किए वो कल्याण जी आनंद जी का ही संगीत था. बहुत खूबसूरत गीत था और उम्मीद करती हूँ आप सभी ने पसंद भी किया. और आप तक किसने पहुँचाया?
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स. क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स परफेक्ट फॉर माय बिजी डे. अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर.
0: भई हारप्रीत लिखती है कि आजकल मैं लंदन आई हूँ. वेलकम वेलकम टू लंदन. और जितने दिन भी रहे हैं खूब इंजॉय कीजिए. हो सके तो हमारे स्टूडियो तक भी आइए, आपसे मिलकर खुशी होगी. एंड आप कौन हैं? गुड आफ्टरनून सरिता जी, आई एम इंजॉइंग योर प्रोग्राम. ब्यूटीफुल सॉन्ग्स रंजना कुकाटिया. थैंक यू रंजना, आपने शायद मुझे पहली दफ़ा मैसेज भेजा है. वैसे मैं भुलक्कड़ भी बहुत हूँ. ज्योति गिरीशा, थैंक यू आपका भी. दिव्या इनहैरो एंड मीरा जी, इरम जी, आप संतोष इनहैरो, मिसेस शेख आप भी सुन रही हैं, इंसलाव एंड तोशी जी आप भी सुन रही हैं प्रोग्राम. इंतशाब, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेज. सहर, मृदु, अरुणा दवे, आप सभी का तह दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. आगे बढ़ लें.
2: Sarita Sabharwal with your weekend classics. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Did you say need anything from Tesco?
4: I'm glad you mentioned it. How about free fruit and veg for schools? That's right, Fruit Giant. We want to help a million school kids get fruit and veg for free. Nailed it. Tesco. Every little helps.
5: Tesco is providing funding to schools to buy fruit and veg through its free fruit and veg for schools and community grant programs. 1 million ambition is from April 2026 to July 2029. Visit tescoplc.com/schools.
6: ये है लाइका गोल्ड.
7: ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम.
8: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
9: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
8: Visit travelhubworld.com.

0: बासमती राइस।
1: दिशा बासमती राइस अवेलेबल एट कच्चा बाजार वाइट चैपल एंड बेक्टन ब्रांच।
0: दिशा बासमती राइस।
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: ਸਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਈ 769 ਤੇ ਵਰਜਿਨ ਮੀਡੀਆ 811 ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੀ
5: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप
6: टेबल पे सिर्फ एक हीरो जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स
5: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स
6: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स देसी स्वैग इन एवरी बैग
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
8: फ्रॉम सीनिक ब्रेक्स इन स्कॉटलैंड द लेक डिस्ट्रिक्ट डेवन एंड कॉर्नवॉल टू क्लासिक यूरोपियन जर्नीज Across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
9: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists.
10: Bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
9: Call today on 01923 883 100.
10: Or go to skylordcruiseandholidays.com.
9: Book with confidence.
10: We're Atoll protected.
11: Shikar jab tak nazron ke samne hai, teer chala dena chahiye.
12: Kal Shiva is pinjre mein hoga. जिंदा या मुर्दा
13: वॉच राजा शिवाजी स्टारिंग रितेश देशमुख संजय दत्त अभिषेक बच्चन एंड विद्या बालन रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 1st May
14: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन
15: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 02071321458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk
14: लाइक अ रेडियो फाइनलिस्ट एट द रेडियो एकेडमी आरियाज 2026

0: आप ही जहाँ भी ले जाएं ये राय हम संग हैं, यही तो हम चाहते हैं कि जहाँ भी आप जाएं हमें साथ लेकर जाएं। जैसे कि संध्या जी लिखती हैं, मैं ग्रीन स्ट्रीट पर हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं आपके साथ हूँ क्योंकि मैं ऐप पर ये प्रोग्राम सुन रही हूँ। थैंक यू सो मच। और दिनेश पोपट जी कहते हैं, हम भी संग संग हैं आपके। हाना आप भी कहती हैं, हम भी आपके साथ चल रहे हैं। एंड हमें प्यारी सी हरप्रीत जो वैंकूवर से हमेशा मुझे मैसेजेस लिखकर भेजती हैं, आजकल लंदन आई हुई हैं, स्लाव में हैं और इन्जॉय कर रही हैं प्रोग्राम को, और कहती हैं ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है इसलिए मेरे नाम कर दें। तो चलिए आपके नाम किया। और जिस जिस को भी ये गाना बहुत पसंद है वो समझ लें, उन्हीं के लिए मैंने इस गीत को प्रोग्राम में जगा दी।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you today. Indian rupees 128.73, Pakistani rupee 378.15, Sri Lankan rupee 433.44, Bangladeshi taka 166.59, Afghanis 87.49 and US dollars 1.35.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Gold.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: राइट भी, गोल्ड का रेट इस वक्त मार्केट में चल रहा है 109 pounds and 35 pence पर ग्राम।
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Sarita Sabharwal.
0: गीत आपको पसंद आ रही है ये जानकर बहुत खुशी होती है। मौसम का मजा ले रहे हैं या नहीं, क्या कर रहे हैं इस वक्त, जानना चाहती है सरिता आप सबसे। जल्दी से बताइए कहाँ बैठे सुन रही हैं।

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
2: राइट भाई, इस वक्त मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच हो रहा है एंड मुंबई इंडियंस चूज टू बैट फर्स्ट. उन्होंने 19.1 ओवर्स में बना लिए 150 रन्स और उनके 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं.
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
2: Like a gold. जी हाँ, अच्छे अच्छे गीत आपको यहीं सुनने को मिलते हैं. जिस भी जरिए को आपने चुना है, अलेक्सा के जरिए हमारे बैच सुनते हैं वजाहत हमेशा, तो आपका भी स्वागत है. डैप पर सुन रहे हैं, गूगल होम एंड लाइका गोल्ड .com जहाँ भी सुन रहे हैं आपका स्वागत है.

0: और अगला गीत हमें पहुंचाएगा न्यूज तक, और जिन मेरे साथियों ने अभी अभी ज्वाइन किया उन सबका स्वागत।
1: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
2: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
1: ये तो बताओ, कोई पता चला?
3: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
1: तो शुभकामनाएं, देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
4: शीघ्र शीघ्र
3: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
5: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com. Step into the new grand showroom of Kajal's Couture, Southall.
9: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
8: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
9: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
8: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
10: काश मेरा मेरी हो जाए, चाहे एक दिन के लिए सही।
11: एक मिनट के लिए मेरे आंखों में देखो।
12: A story full of heart, now on the big screen.
13: ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है।
10: पर कल तुम्हें ये दिन याद नहीं रहेगा।
12: आमिर खान presents एक दिन is now showing in cinemas. Book your tickets and watch it today.
14: K Furniture stock clearance sale is now.

0: भाई जिंदगी वैसे ही हर कदम एक जंग होती है। ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, दो गीत सुने आपने। दोनों फिल्मों का नाम था नसीब। एक रिलीज हुई थी 1981 में और दूसरी रिलीज हुई 1998 में। जो ये वाला गीत था, जिंदगी इम्तहान लेती है, ये फिल्म बनी थी 1981 में और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1 मई 1981 को। तभी मैंने चुना था इस फिल्म के गीतों को, इस फिल्म के इस गीत को कि वेल आज के दिन जो फिल्म रिलीज़ हुई 2 मई, जो मुझे पता है उसका नाम था चोरी मेरा काम, जिसमें शशि कपूर थे, जीनत अमान थी, लेकिन उस फिल्म के गीत सो। तो मैंने सोचा क्यों ना ये फिल्म कल ही रिलीज़ हुई थी, मतलब 1 मई को रिलीज़ हुई थी, तो क्यों ना इसी फिल्म का गीत चुना जाए। और तभी मेरी नज़र पड़ी कि 1998 में भी तो एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था नसीब, तो उस फिल्म का भी एक गीत हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ दोनों के दोनों गीत आपने पसंद किए। ये वाली फिल्म जो 1981 में रिलीज़ हुई थी, ये मनमोहन देसाई जी ने बनाई थी, कादर खान साहब ने लिखा था इसकी स्क्रिप्ट को एंड प्रोड्यूस भी किया था मनमोहन देसाई जी ने। अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, रीना रॉय, बहुत लंबी जोड़ी थी इस फिल्म की, जो जितने भी आर्टिस्ट ने काम किया था। एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था और उनका संगीत तो आनंद बख्शी साहब का लिखा गीत था। उम्मीद करती हूँ कि गीत आपने पसंद किया। और दूसरा गीत जो मैंने 1998 की फिल्म से चुना था, वो फिल्म थी जिसे कीर्ति कुमार जी ने बनाया था, रिटन बाय आदेश के अर्जुन, एंड इस फिल्म में काम किया था गोविंदा ने, ममता कुलकर्णी थी, कादर खान एंड राहुल रॉय भी थे इस फिल्म में। नदीम श्रवण का था संगीत और समीर ने लिखा था इस गीत को। शिकवा नहीं किसी से ये काफ़ी चला था, मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग इन द एल्बम था। इसके अलावा भी दूसरे गाने अच्छे पसंद किए गए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी दोनों के दोनों गीत पसंद किए। अगर हाँ तो ज़रा इशारा कर दीजिए। जो मेरे साथी अभी अभी मेरे साथ जुड़े उन सबका थैंक्स करना चाहूँगी। देबू देव बेल्जियम में अक्सर हमारा प्रोग्राम सुना करते हैं, लेकिन इन्होंने लिखा है कि वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू लाइका गोल, थैंक यू फॉर ट्यू वेल, ये किसने मैसेज भेजा? ओके, नमस्ते, हाउ नाउ आई एम इन नेपाल इन माय बर्थ प्लेस एंड आई एम एंजॉइंग योर शो विद माय टू यंग ब्रदर्स नारायण एंड शाम्भी एंड दे आर सेइंग हेलो टू यू एज वेल। एंड आपने वीडियो भी भेजा है नेपाल का, थैंक यू सो मच, और इंजॉय करें। नेपाल में कहाँ हैं इस वक्त आप बताइएगा मुझे। आई बीन टू नेपाल आई थिंक थ्री टाइम्स। एंड ये मैसेज किसने लिख के भेजा है, ये है जस्ट वॉन्डरिंग वट टाइम इज़ द फरमाइश बींग प्लेड, ओ प्लेइंग ब्रिलियंट ट्यून्स बट एट द प्रेजेंट, पर कौन है आप? अपना नाम नहीं लिखा आपने, क्या नाम है आपका? नाम लिखा करें तो अच्छा, रमेश गामी जी। आपने कहा कि फरमाइशें कब लेते हैं, वैसे मैं नॉर्मली मैं कहती नहीं हूँ कि अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। जैसे फर्स्ट आवर में सपने वर्ड था, सपना था, सपने पे सारे गाने सुन रहे थे, तो उसमें अगर किसी की कोई फरमाइश आती है और मेरी प्लेलिस्ट पर वो नहीं है तो मैं आपकी फरमाइश को इंक्लूड कर सकती हूँ। अब फिर भी आप लिखकर भेज दें, देखते हैं अगर मैं अपनी प्लेलिस्ट पर उसे एडजस्ट कर सकी तो मैं ज़रूर सुना दूंगी। हरीश रूडा जी दोबारा से मैसेज किया, थैंक यू। महेंद्र बरजारिया जी हैरो में सुन रहे हैं, कहते हैं ग्रेट सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म नसीब, एक्सीलेंटली पिक्चराइज्ड ऑन अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा एंड रीना रॉय। एंड महेंद्र जी थैंक यू आपका। संध्या जी आप भी बड़े प्यार से सुन रही हैं प्रोग्राम, इंजॉय करें, थैंक्स अ लॉट।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट भी, अगर इनके ज़रिए आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो काम तो बहुत आसान है। हम हमेशा आपको बताते हैं कि यू कैन ट्रांसफ़र इट वाई अ ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। और अगर आप आज पैसे भेजना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। आप एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले 127 रुपीज़ 95 पैसा ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना अच्छा रेट मिलेगा।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: As fuel prices continue to rise, running costs are getting harder to ignore. So MG is making the switch to electric simpler with a £1,500 MG EV car grant, 0% APR representative and zero deposit required across the MG EV range, excluding MG IM5 and MG IM6. A smart move, made simple. Book your test drive today at mg.co.uk. MG Motor UK are a credit broker, not a lender. PCP balloon payment required for ownership, registered by June 30th. T's and C's at mg.co.uk.
1: Sarita Sabowal with your weekend classics.
3: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 Power line.
1: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
4: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
1: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
4: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
1: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.

0: किशोर दयान लता जी की आवाज़ें आपने सुनी फ्रॉम द फिल्म सच्चा झूठा। सच्चा झूठा मनमोहन देसाई जी ने इसे डायरेक्ट किया था, राजेश खन्ना एंड मुमताज़ ने इस फिल्म में काम किया था एंड संगीता कल्याण जी आनंद जी का। और ये गीत भी आज इसलिए शामिल किया गया क्योंकि ये भी गीत रिलीज़ हुआ था या इस फिल्म ये फिल्म रिलीज़ हुई थी ऑन 1st of May इन 1970। आपको पता था, आपने अगर देखी थी 1970 में ये फिल्म 1 मई को, तो किसके साथ देखी थी? अच्छी लगी थी आपको फिल्म? बहुत अच्छी फिल्म थी सच्चा झूठा। इसमें विनोद खन्ना भी थे और उनका भी बहुत अच्छा काम था। एंड आई थिंक वॉज इट फरीदा जलाल और नाज, मुझे याद नहीं आ रहा है, उन वो सिस्टर का रोल किया था उन्होंने, उनका भी काम बहुत खूबसूरत था। तो अगर देखी थी तो मुझे कॉमेंट लिखकर भेज सकते हैं। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी कब? 1st of May इन 1970। और आप तक ये गाना किसने पहुंचाया?
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Like a gold. Tasty track of the hour brought to you by Coco Noodles.
0: और भाई ये गाना भी बहुत खूबसूरत है और ये फिल्म थी जमा मोहब्बत। शम्मी कपूर थे इस फिल्म के हीरो और आशा पारिक थी इस फिल्म की हीरोइन। एंड भप्पी सोनी ने इसे डायरेक्ट किया था, शंकर जयकिशन का संगीत। और आज के प्रोग्राम में ये गीत इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि ये फिल्म भी रिलीज़ हुई थी 1st of May इन 1971।

0: मोहन सहगल ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, फिल्म में काम किया था शशि कपूर, आशा पारेख, ओम प्रकाश एंड दिलीप राज ने, म्यूजिक बाय शंकर जयकिशन, बहुत फेमस हुए थे इस फिल्म के गाने। और आज मैंने इस गीत को इसलिए जगह दी क्योंकि ये फिल्म भी आज ही के दिन 1 May 1968 में रिलीज हुई थी।
1: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station.
0: और वही इसी नाम से एक और फिल्म भी थी। कौन सी फिल्म थी? कन्यादान, जो 1993 में आई थी। आपने कौन सी कन्यादान देखी थी, 1968 में जो आई थी या फिर ये वाली जो 1998 में आई थी? आदेश श्रीवास्तव जी का संगीत और उन्हीं का कंपोज हुआ गीत मैं आप तक पहुंचा रही हूं। उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं लता मंगेशकर एंड उदित नारायण। सुनते हैं जो हमें न्यूज़ तक पहुँचाएगा।

0: जी हाँ, इट इज़ लवली मौसम, और मैं हमेशा कहती हूँ अपने दिल के मौसम को ठीक ठाक रखिएगा। खूब ऐसे खूबसूरत गीत सुनकर तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। संध्या जी लिखती हैं, थैंक गॉड मैं घर पहुँच गई, बारिश शुरू हो गई है। अच्छा, जब तक मैं बाहर थी बारिश नहीं थी। और प्रोग्राम में पहले दो गाने आपने सुन लिए बैक टू बैक, पहला गीता नाजायज़ फिल्म से, 1995 की फिल्म थी, और इस गीत को सुनना चाहा था रमेश कामी जी ने, और उन्होंने आज अपने ब्रदर को याद किया, तो उनकी आत्मा को भी शांति मिले एंड आप उन्हें बहुत मिस करते हैं, ये आपने लिखकर भेजा है मुझे। एंड आप कौन हैं, लिखते हैं डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब, सारे गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये जानकर मुझे भी खुशी होती है। एंड एक और फरमाइश है किसी की, और उन्होंने लिखा है कि कैन यू प्लीज़ प्लीज़ प्ले छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई रंजना कुकाडिया, तो आई बी प्लेइंग दिस सॉन्ग, थोड़ा इंतजार कीजिएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई, इनके जरिए अगर आप पैसे करना चाहते हैं ट्रांसफर इंडिया, तो बहुत काम आसान है। यू कैन गो टू द ब्रांच, यू कैन गो ऑनलाइन, और आपके पास अगर ऐप है डाउनलोड किया हुआ, तो ऐप से आप आराम से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं कहीं भी इन इंडिया। एंड आज आपको बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, 127 rupees and 95 paisas फॉर 1 British sterling pound.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है लाइका गोल्ड।
1: Pakistan cricket score updates brought to you by Remitly. Send money to Pakistan with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: राइट भी, आज तो कोई मैच नहीं है पाकिस्तान का, कल खेले थे हैदराबाद किंग्समैन एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड, और हैदराबाद जीते थे 2 रन से, और कल मैच होने वाला है पिशावर जलमी एंड हैदराबाद किंग्समैन के बीच में।
1: पाकिस्तान क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे। Remitly UK लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: As fuel prices continue to rise, running costs are getting harder to ignore. So MG is making the switch to electric simpler with a £1,500 MG EV car grant, 0% APR representative and zero deposit required across the MG EV range, excluding MG IM5 and MG IM6. A smart move, made simple. Book your test drive today at mg.co.uk. MG Motor UK are a credit broker, not a lender. PCP balloon payment required for ownership. Registered by June 30th. T's and C's at mg.co.uk.
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold.
4: Like a Gold.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
5: London Entertainment di sab to vaddi raat aa rahi hai. Four Pillars Entertainments Limited presents ABPD Awards UK 2026. Live performances by Naveen Kundra, Manjeet Bobby, Nikki Sethi, the hor zabardast artists. 9th May, sham 6 baje, The Center Banqueting Suite, South Hall. For tickets call Manjeet Bhamra at 7956300367. ABPD Awards UK 2026. Exclusive radio partner Leica Radio Network.
1: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
6: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
1: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
6: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
1: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
6: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
1: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
6: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PLC. PRA and regulated by the FCA and PRA.
4: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
7: in Dubai.

0: गीत सुना आपने पूरा का पूरा और इस तरह अब्रप्टली बंद हो जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। एनीवे, आर्टिस्ट ऑफ द वीक में कल्याण जी, आनंद जी का संगीत आप पूरा हफ्ता सुनते रहे। और ये गीत मैंने चुना था, मुझे उम्मीद है हिमालय की गोद का ये गीत आपने ज़रूर पसंद किया होगा। और अब मैं प्रोग्राम में श्रद्धांजलि देने जा रही हूँ एक ऐसे अभिनेता को, सुदेश कुमार जी के नाम से आप जिन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। 17 मार्च 1931 में उनका जन्म हुआ था इन पिशावर। एंड कल 1 मई को 95 ईयर्स की आयु में उनका निधन हो गया। हिंदी सिनेमा के बहुत बहुत जाने माने ये एक्टर थे और इन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया। एंड 1950 से लेकर 1960 के दरमियान उन्हें सरगम 1950 की फिल्म, दयारे हबीब इन 1956, इसके अलावा बहुत सारी दूसरी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया था। एंड ही वाज वेरी क्लोज टू पृथ्वीराज कपूर जी और उन्होंने उनकी काफ़ी मदद भी की थी। 1961 में उन्हें बतौर हीरो सारंगा फिल्म मिली थी, जिसका गीत मैंने क्यों किया हुआ है ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन पहले एक और गीत जो मुझे बहुत पसंद है उनकी फ़िल्म का, वो मैं आप तक पहुंचाने जा रही हूं। बड़ा आदमी था फिल्म का नाम। तो इस गीत को मैं बनाने जा रही हूं डेरी वैली की तरफ से आप तक पहुंचने वाला गीत।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.
0: जी हाँ, ये गीत मैंने चुना है बड़ा आदमी फिल्म से, लेकिन इसके अलावा उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया। गृहस्थी, खानदान, गोपी, वारिस, धरती, मन मंदिर, बदलते रिश्ते जैसी फिल्मों में आपने उन्हें हमेशा पसंद किया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति, और हम उन्हें याद करें, श्रद्धांजलि देते

0: महेंद्र कपूर साहब एंड लता जी ने गाया इस गीत को। फिल्म का नाम था बड़ा आदमी, इसका भी हिस्सा थे सुदेश कुमार जी और ये गाना उन्हीं पर पिक्चराइज हुआ। आज वो दुनिया में नहीं रहे हैं लेकिन उनके काम के जरिए हम हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। उनकी सबसे ज़्यादा कामयाब फिल्म थी सारंगा, जिसका गीत आ रहा है। लेकिन बता दूँ कि ये गीत जो आपने सुना ये आप तक पहुँचाया किसने? कमान भाई, चलिए चलिए, क्यों नहीं चलते हैं?
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Sarita Sabawal.
0: Ji haan, aap hi ke saath hoon on like a gold aur ab sunte hain hum Saranga teri yaad mein. बहुत खूबसूरत गीत है, उम्मीद करती हूँ आप सभी को जरूर पसंद आएगा।
3: दिस सुपरहिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस विद अ रेंज ऑफ ग्रेन्स एंड फ्लेवर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। यू कैन मेक एवरी मील मेमोरेबल।

देशराज जी, थैंक यू सो मच कि आपने ये इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंचाई। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगा ये गाना। देवुदेव बेल्जियम से आजकल नेपाल में, आपके नाम विजय गनोवा जी, आपके नाम विनी विनोद जी, वरुण जी, पूरन कपूर जी, दिनेश पोपट जी, ज्योति गिरीश, सबके नाम।

0: मुकेश जी का गाया हुआ ये गीत सुदेश कुमार जी पर पिक्चराइज हुआ था। ये उनकी बेस्ट फिल्म थी और इसका फिल्म की सफलता का श्रेय संगीत को भी जाता था और संगीत दिया था सरदार मलिक जी ने इस गीत के जरिए। और इससे पहले वाला गीत आप तक पहुंचाया हमने और याद किया सुदेश कुमार जी को, जो 95 ईयर्स की एज में कल उनका देहांत हो गया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।
1: ये है Like a gold.
0: और भाई अब आपको याद दिला दूं, द किंग ऑफ मेलोडीज कुमार सानू रिटर्न्स टू द यूके फॉर वन नाइट ओनली। कैच द सुपरस्टार सिंगर एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एल्बर्ट हॉल ऑन बैंक हॉलीडे मंडे 25th मई। गेट योर टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू और टिकट मास्टर। एन एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर कौन है? लाइका रेडियो नेटवर्क।
2: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: At Tesco, we know that right now, every little helps. That's why we've made Aldi Price Match available in over 2,000 Tesco Express stores. Price matching on essentials, so you can bag the basics with confidence. When every penny counts, just look out for the Aldi Price Match logo next time you nip into your local Express. Tesco, every little helps. Prices checked and matched in Aldi stores and online twice weekly. Pro rata excludes promotions. Selected products excludes Northern Ireland and Woosh. See tesco.com/aldi-price-match.
4: ये है
1: लाइका गोल्ड।
5: ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
0: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: Visit travelhubworld.com।
6: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी
7: जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हसबंड जी
6: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गेरंटी। शनिवार 27 जून ना 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे। टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655। सखना रेजो हस्बैंड जी।
8: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
9: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
8: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
9: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
8: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
10: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 or 24 hour line.
9: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help 2 children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
11: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
12: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
11: Call today on 01923 883 100
12: or go to skylordcruiseandholidays.com.
11: Book with confidence.
12: We're Atoll protected.
13: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well-planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
14: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
15: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज।
4: रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
16: घटा के संग संग
17: संभलना
16: हवा के साथ साथ

0: जी हाँ, कल मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और अब मेरे जाने का वक्त है, देखे ना, घड़ी की सुइयां भी यही बता रही हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ और भी करना है काम।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca bowl today. This is Leica Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Leica Group. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Bangladeshi taka 166.59, Indian rupees 128.74, Pakistani rupees 378.40, and Sri Lankan rupees 433.65, Afghanis 87.49, and US dollars 1.35.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: राइट, गोल्ड का रेट इस वक्त मार्केट में 109 pounds and 35 pence का एक ग्राम सोना।
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.
3: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
1: India cricket score updates, brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: राइट भी, आज मैच हो रहा था चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच, और आपको जानकर खुशी होगी कि चेन्नई सुपर किंग्स 1/8 wickets विद 11 बॉल्स रिमेनिंग। उनको टारगेट मिला था 159 का और उन्होंने 160 रन्स बनाए विद द लॉस ऑफ 2 wickets एंड 18.1 ओवर में। सो कल कौन सा मैच होगा देखेंगे और आपको अपडेट भी करते रहेंगे।
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
2: ये है Leica Gold.
0: और Leica Gold पर इस वक्त आपका साथ निभा रही है आपकी अपनी सरिता सबरवाल, और मेरे जाने में बस थोड़ा सा वक्त 12 मिनट बाकी बचे हैं, और एक गीत शामिल करना है प्रोग्राम में जिसकी फरमाइश मुझ तक पहुंची थी। अब किसने कहा था ये गाना सुना देना, आई थिंक रंजना ने कहा था ये गाना प्रोग्राम में शामिल करें, तो मैं वो गीत ज़रूर शामिल करूंगी। और मेरे वो साथी जो लेट लतीफ़ हैं, देर से आए, अपनी हाजिरी देर से लगाई है, उनका भी थैंक्स करना चाहूँगी। जैस्मीन, थैंक यू। देशराज बसंत जी, आपका भी बहुत बहुत दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मिसिस पाके चियांग, आपका भी थैंक यू। भारती जी, महेंद्र बरजारिया जी, रेनो वशिष्ठ, आप भी देर से आई हैं। रानी जी, वत्सला जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी तरह से साथ दीजिए, मेरी अगली मुलाकात कल होगी। जी हाँ, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक एवरी वीकेंड मैं आपका साथ निभाती हूँ, तो कल भी आपका साथ निभाने के लिए हाजिर हो जाऊँगी। लेकिन आपको बता दूँ कि नेक्स्ट वीक मंडे टिल फ्राइडे आई विल बी सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। सो सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं आपका साथ निभाऊंगी मंडे टिल फ्राइडे, लेकिन उससे पहले कल भी आऊंगी। कल मैं आपका साथ निभाने के लिए हाजिर हो जाऊंगी 4 बजे की खबरों के बाद। मेरे बाद आ रहे हैं सैंडी शाह, उनका आप स्वागत कीजिएगा। विंटेज गोल्ड प्रोग्राम सुनिएगा, बहुत प्यारे प्यारे गीत, और उसके बाद गोल्डन नाइट्स होंगी और फिर मॉर्निंग शो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए लवली एंड सुपर्ब वीकेंड।
4: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
5: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
4: ये तो बताओ, कोई पता चला?
5: गुरु गुरु,
6: इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
4: शुभकामनाएं, देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र
6: Crazy for Kishore at the Prince Regent Hotel on 19th June. To book all, 0208-514-5400. Book online at Eventbrite.
7: Exclusive radio partner, Laika.

0: ડબકારો ચૂકી જાય છે.
1: ડબકારો સ્ટારિંગ દેવેન ભોજાની અને આર્જવ દેસાઈ ઇન સિનેમાઝ નિયર યુ.
2: પંકજ સોડા પ્રેઝન્ટ કરે છે હાસ્યથી ભરપૂર સુપરહિટ નાટક બા અમારા બાઝીગર, કોમેડી ક્વીન લેડી અમિતાભ પ્રતિમાટી અને જીતુ કોટક સાથે યુકેના અલગ અલગ શહેરોમાં લાઈવ. રાઇસ્લિપ, આલ્બર્ટન, લુટન, પોટર્સ બાર, ફિન્ચલી, સાઉથ લંડન અને ઇસ્ટ લંડન. હાસ્ય, મનોરંજન અને ફેમિલી સાથે એન્જોય કરવાનું પરફેક્ટ નાટક. આજે જ કોલ કરો પીઆર પટેલ ઓન 07957555226.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागा सन.
4: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन.
5: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर.
4: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
5: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन.
4: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स.
5: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी.
4: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
7: No more worries for me or you.
8: Southall Travel, at all protected.
9: Are we there yet?
10: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
9: Relax, I've booked the Uber already.
10: How? My roaming isn't even working yet.
9: I switched to Simsy before we left London.
10: Simsy? Since when are you the tech expert?
9: Since I decided I want a stress-free holiday.
11: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
12: T's and C's apply.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
14: K Furniture stock clearance sale is now on. Enjoy massive discounts in store on sofas, Italian beds, bedroom and dining furniture, all available for immediate delivery. Buy an orthopedic double divan bed for £399 and get the headboard and drawers absolutely free. Hurry, deals are on while stocks last. K Furniture stores at Cricklewood, Harrow and Slough, or visit kfurniture.co.uk.
15: Sarita Summerwall with your weekend classics.
16: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई.

0: जैसे टोल्ड यू ट्रूली सब्लाइम मुकेश की आवाज फिल्म का नाम हम लोग 1951 नाउ वी गोना लिसन टू अ फर्स्ट व्हेन आई से अ फर्स्ट नॉट बीन प्लेड ऑन विंटेज गोल्ड बिफोर गोइंग बैक टू 1949 फिल्म का नाम है बालम और आवाज होगी मोहम्मद रफी साहब की And straight after that, we can listen to the wonderful vocals of Talat Mahmood. Film ka naam Lal Pari from 1954. This is Vintage Gold with Sandy Shah on Like a Gold.
1: Vintage Gold. Every weekend with Sandy Shah. Vintage Gold with Sandy Shah on Like a Gold, Greater London.

0: Leica Gold.
1: Discover the best of Portugal with a fantastic Lisbon and Porto Twin City centre break with Skylord. Fly from the UK and spend 3 nights exploring vibrant Lisbon with its historic streets, trams and riverside views. Then travel by train to beautiful Porto for 3 more nights, discovering its famous wine cellars and charming old town. Skylord prices start from just £339 per person. For multi-centre city break packages with a difference, see skylordcruiseandholidays.com.
2: Call 01923 883100. At all protected.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन।
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635. 757 Greens by Danube, prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Hellaro ane Umbro jevi acclaimed Gujarati films na national award winning director Abhishek Shah par ek var leine aavya che ek emotional comedy.
7: Atamar to jindagi che ke film ni vaarta.
6: Ek you heart ji kai feel kartu natu.
7: Ari vaarta adhuri che bhai.
6: But one beat and everything changed.
8: Tamaru hriday दबकारो चुकी जाए.
6: दबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आर्जव देसाई.
9: लोकेशन अहिना करेला अहिज भोगवाना छे.
6: इन सिनेमास नहीं आयू.
10: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help 2 children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
11: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
12: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जैमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
11: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जैमिन्स पोटैटो चिप्स.
12: जैमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग.
13: फ्रॉम सीनिक ब्रेक्स इन स्कॉटलैंड, द लेक डिस्ट्रिक्ट, डेवन एंड कॉर्नवॉल, टू क्लासिक यूरोपियन जर्नीज अक्रॉस फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली एंड द नेदरलैंड्स, स्टार टूर्स टेक्स केयर ऑफ एवरी डिटेल, इंक्लूडिंग Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
0: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
15: This is Leica.

0: सो टाइम फास्ट रनिंग आउट इन दिस आवर, जो अगला गीत होगा आवाज होगी लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम चोरी चोरी, शंकर जयकिशंकर संगीत, देन आफ्टर दैट अ ब्यूटीफुल ड्यूएट, आवाज लता मंगेशकर और गीता दत्त की, फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई, एंड आई शैल जॉइन यू स्ट्रेट आफ्टर द न्यूज.
1: सेवन स्टेशंस, वन पॉडकास्ट, वन मोबाइल ऐप. This is the Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: Location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: Step into the new grand showroom of Kajal's Couture, Southall.
0: At 159 The Broadway, Southall. UB1 1LR.
5: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
0: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Kajal's Couture. Now open 7 days a week.
5: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
6: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए
7: कल सिवा इस पिंजरे में होगा जिंदा या मुर्दा
8: वॉच राजा शिवाजी स्टारिंग रितेश देशमुख संजय दत्त अभिषेक बच्चन एंड विद्या बालन रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 1st May
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com T&Cs apply
10: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लिखाई रह्यो छे
11: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाय रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर
10: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
11: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे
10: दर्शन पण अने यूरोप पण
11: सीट्स जल्दी भराई रही छे आज ज बुक करो स्टार टूर साथे
10: कॉल 020-8900-2323 द स्टार टूर्स
11: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन
12: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
13: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 years of experience, 40,000 passengers every year. Star Tours is trusted for a reason by travelers who appreciate familiar comforts. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: Pure Soca Radio Network, across London, Manchester and the Midlands. The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
1: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
0: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
1: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
0: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: हिल्लारो अने उम्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल एवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लेने आवे छे एक इमोशनल कॉमेडी
3: अतमार तो जिंदगी छे के फिल्म नी वार्ता
2: एक यू हार्ट जी कई फील करतु नतु बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज
4: तमारो हृदय धबकारो चुकी जाय छे
2: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आर्जव देसाई इन सिनेमास नियर यू
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फौरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागसन
6: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
8: फ्रॉम सीनिक ब्रेक्स इन स्कॉटलैंड द लेक डिस्ट्रिक्ट डेवन एंड कॉर्नवॉल टू क्लासिक यूरोपियन जर्नीज अक्रॉस France, Switzerland, Italy and the Netherlands. Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
9: Classic Nagme, aapke apne Leica Gold par.

0: Non-stop classics. Like a gold on 10:35 AM.
1: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu chhe ek dhamakedar international Gujarati comedy
2: Jay's Entertainment laine avi rahya chhe sakhna re jo husband ji
1: Leena Shah ane Sameer Shah sathe hasya ni full guarantee shanivar 27 June na 27 patidar samaj Wembley Park ma raat na 8 vage tickets booking mate visit karo eventbrite.co.uk call karo video rama athwa call karo Mr. B 07860280655 सखना रे जो हस्बैंड जी
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
0: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 now apta bonded mantra holidays what's your travel mantra
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 02085748410
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
6: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our Radio.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757 Greens by Danube Prime Location
7: High Appreciation
8: in Dubai
9: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए
10: कल सिवा इस पिंजरे में होगा जिंदा या मुर्दा
11: वॉच राजा शिवाजी स्टारिंग रितेश देशमुख संजय दत्त अभिषेक बच्चन एंड विद्या बालन रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 1st मई
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Like a Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at likeamedia.co.uk.
12: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत पुराने मगर सदाबहार गीत
13: मेरे दिल से